इस गाने को आवाज दी है गुरु रंधावा ने। म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय गुरु रंधावा, गिल मचरई एंड रॉनी अजनाली। धमाल फोर से सुनते रहिए कहर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आया मुझे ये ख्याल, गुड मॉर्निंग नमस्ते सत श्री अकाल वणकम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफरीन एंड यू हैव ट्यून्ड इन टू 89.6 मिर्चीवान। और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही जिंदगी से हम थोड़े से मिल लेते हैं, एक नई दिन की शुरुआत होती है, धीरे धीरे सुबह की मस्ती से हम घुलमिल जाते हैं। जिंदगी का देखा जाए तो यही तो मजा है, हर मोड़ पर कुछ नया मिलता है। चलो फिर आज के दिन को भी अपना दोस्त बनाते हैं और इस पल का पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। सो यस, वेलकम टू 89.6 मिर्ची वन, मैं हूँ आफरीन आपके साथ। आपके दिन को बनाने के लिए ये रहे कुछ जबरदस्त से गाने, सिर्फ हियर राइट हियर ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga.
2: Hello.
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उसपे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
2: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं चाहिए मुझे।
5: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या
2: कोई बोल रहा
3: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
8: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
9: थैंक यू।
10: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
11: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष।
10: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

देखो दोस्त, अगर मैं कहूँ आपसे कि अब से आपका ना चेहरा ही आपका बोर्डिंग पास बन सकता है ट्रैवल में, तो आप मानोगे? मानना ही पड़ेगा बॉस, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए, अगर आप कतर एयरवेज से एलिजिबल फ्लाइट पे दोहा से कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं और आप अडल्ट है यानी 18 प्लस है, तो HIA ने यानी हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया फास्ट पास फीचर आपकी फेस रिकग्निशन को ही बोर्डिंग क्रेडेंशियल बना देगा। एक बार बायोमेट्रिक प्रोफाइल क्रिएट कीजिए और फिर सेल्फ बैकड्रॉप, सिक्योरिटी और बोर्डिंग किट पर बार बार डॉक्यूमेंट्स दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, फास्ट पास ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं, और पासपोर्ट फिर भी साथ रखना होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इमिग्रेशन ई गेट्स या अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हो जाए तो फिजिकल पासपोर्ट ही आपके काम आने वाला है ना। और देखिए, अगर प्राइवेसी कॉन्शियस लोगों के लिए भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर आप एयरपोर्ट कियोस्क से रजिस्टर करते हैं तो आपका बायोमेट्रिक डेटा सिर्फ उस ट्रिप के लिए यूज होता है और फ्लाइट डिपार्चर के 24 घंटे बाद ये डिलीट कर दिया जाता है। अगर कतर एयरवेज ऐप से रजिस्टर करते हैं तो डेटा आपका डिवाइस पर रहता है और पासपोर्ट फिर भी साथ रखना होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इमिग्रेशन ई गेट्स या अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हो जाए तो फिजिकल पासपोर्ट ही आपके काम आने वाला है ना। और देखिए, अगर प्राइवेसी कॉन्शियस लोगों के लिए भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर आप एयरपोर्ट कियोस्क से रजिस्टर करते हैं तो आपका बायोमेट्रिक डेटा सिर्फ उस ट्रिप के लिए यूज होता है और फ्लाइट डिपार्चर के 24 घंटे बाद ये डिलीट कर दिया जाता है।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
3: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है, उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं। आप यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
2: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल डाल। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.

0: अर्जुन आएंगे?
1: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: श्रेया घोषाल की आवाज साथ देते हुए जुबिन नौटियाल, ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी धड़क 2। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है ऑन दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मॉर्निंग। 8 जुलाई टुडे इट इज एंड वेडनेसडे। ओ माय गॉड, इट इज ऑलरेडी वेडनेसडे। अरे यार, कल थर्सडे, मतलब यार ऑलरेडी एंड द वीकेंड। यार चल के वीकेंड के बारे में आज फिर कुछ बातें हो ही जाएगी थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले वक्त अनुसार फिलहाल मैंने ये बताना है, मौसम का हालचाल बताना है, और वो कुछ इस तरह से है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेल, वेदर देखो ये कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस है, मिनिमम 35 डिग्री सेल्सियस है। फिलहाल जो महसूस कर रहे हो आप 39 डिग्री सेल्सियस है, और आजकल कुछ देख रहे हैं हम ये सिलसिला ऐसा दैट एक हफ्ते से देयर इज नो ह्यूमिडिटी। मतलब आपको पसीने आ रहे हैं क्या? आई डोंट थिंक सो आ रहे होंगे, क्योंकि ह्यूमिडिटी आज भी जो है 32% पर है। लेकिन हाँ जी, आज हवाएं बहुत तेजी से चलने वाली है, 24 किलोमीटर पर आवर इज एक्चुअली वेरी स्ट्रांग। सो बस अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, और अच्छे वाले गानों का जब साथ रहेगा ना तो मूड भी एकदम बढ़िया चलते रहेगा।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100813।
0: और क्या है ना, जब तक हमारी बातों में उलझे रहोगे दिन भी बड़ा जबरदस्त सजाएगा। राघव, तनिष बागची और आशीष कौर की आवाज में अगला गाना ऑन मिट्स हॉट।

0: रोमियो ब्रिजेश चंदेलिया की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची।
1: आफरीन आफरीन सिंपली आफरीन, आफरीन आफरीन सिंपली आफरीन।
0: और देखिए भाई, अब भी यहाँ से जाने का सिलसिला चल रहा है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अभी ट्रैवल कर रहे हैं, अपने होम टाउन्स जा रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और कमिंग विद दिस वीकेंड, मतलब आज 8 तारीख है, 9 तारीख कल होगी, मोस्टली कल से और भी लोग ट्रैवल करने वाले हैं, ये आई थिंक सो ये वीकेंड और उसके बाद वाला वीकेंड मेनी पीपल विल बी ट्रैवलिंग, और उसके बाद में अगस्त से फिर लोगों का आने का सिलसिला शुरू होगा। सो सिंस इफ यू आर ट्रैवलिंग टुमारो, तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सीजन है, ट्रैवल सीजन है, एयरपोर्ट पे थोड़ा सा जल्दी ही पहुंचे तो बेहतर होगा। और अब तो बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हो गई, अगर आप कतर एयरवेज के साथ में ट्रैवल कर रहे हो तो फिर बायोमेट्रिक्स जो है उसकी, मतलब बोर्डिंग पास की जरूरत नहीं है, बस आपका फेस ही काफी है, ये सारा कुछ शुरू है। फिर बच्चों के लिए फिर काफी सारी सुविधाएं हैं वहां पे, तो बच्चों की एक्टिविटीज के लिए भी, इनफैक्ट हमारे एयरपोर्ट पे कुछ कुछ छोटे छोटे प्ले एरियाज भी हैं, बट अलॉन्ग विद दैट बहुत छोटे बच्चे जो है, जो ऑफकोर्स जो टाइमिंग्स होते हैं फ्लाइट के वो बहुत वियर्ड होते हैं, उस वजह से नींद उनकी डिस्टर्ब होती है, तो यार फ्री स्ट्रोलर्स है एंड इट्स एवरीवेयर, मतलब आपको ना कोई रजिस्ट्रेशन करनी है ना कुछ, बस आपको जहाँ पर भी बच्चों की फ्री स्ट्रोलर्स नजर आएगी, यू कैन जस्ट यूज देम, तो बस पूरी आराम से आप अपने ट्रैवल को पूरा कर सकते हैं। मैं हूँ आफरीन आपके साथ, और बस कुछ ही देर में बातें करेंगे अबाउट फुटबॉल वर्ल्ड कप, कल बहुत ही ज्यादा गर्मी हुई है, ये सब कुछ बात करेंगे यार, राइट हियर ऑन मिर्ची, माइक से दिल तक आफरीन के साथ, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: हमारी काम वाली बाई बहुत ही रेगुलर है, हर दूसरे दिन नहीं आती, क्या करूं?
1: वेल इट्स सो सिंपल यार, हर दूसरे दिन नहीं आती ना, तो उसको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही काम पे रखा कर। या इट्स जस्ट अमेजिंग, फैंटास्टिक, सिंपल।

0: Well, my bandhuo, I am right here, your Sakhi on Mirchi 89.6 FM. और देखिए भाई, मिर्ची घड़ी का इशारा तो फिलहाल सुबह के 7:03 की तरफ है, लेकिन हमारा इशारा फुटबॉल के स्कोर की तरफ है, वो भी कुछ ही देर में इस गाने के उस पार। You want to stay tuned with me on Mirchi, Mike से दिल तक आफरीन के साथ, it's hot.
1: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.

गुरु की आवाज में ये गाना और मिर्ची पर आप सुन रहे हो आफरीन को एंड बातें करते हैं अबाउट फुटबॉल वर्ल्ड कप। वेल देखो आज जो है ना हम बात गोल से शुरू नहीं करेंगे, आज हम बातें एक इमोशन, एक ऐसे इंसान जो अपनी जो लेजेंडरी एक रिकॉर्ड है उसे आगे ले जाते हुए बिल्कुल प्रूव कर दिया है कल रात को। वेल लेट्स टॉक अबाउट अर्जेंटीना एंड इजिप्ट, जहां पर 3-2 से हराकर इजिप्ट को अर्जेंटीना ने अपनी जगह क्वार्टर फाइनल्स में बिल्कुल बना ली है। वेल ऑनेस्टली इस मैच के बाद सिर्फ अर्जेंटीना की कमबैक विक्ट्री की नहीं हो रही है, डेफिनेटली इस मैच के बाद इजिप्ट 2-0 से लीड कर रहा था। वेल उनका एक गोल वीएआर के बाद डिसअलाउ हुआ और कुछ डिसीजंस पर उनके प्लेयर्स और कोच ने ओपनली डिसअपॉइंटमेंट भी एक्सप्रेस की थी। वेल मैं यहां पर रेफरी के डिसीजंस और फाइनल जजमेंट नहीं दे सकती ऑब्वियसली, बिकॉज क्योंकि फुटबॉल के रूल्स है, वीएआर के एंगल्स है, ये सब काफी टेक्निकल चीजें होती है, लेकिन एज एन एब्सोल्यूट इमैच्योर न्यूट्रल व्यूअर कल डेफिनेटली यार इजिप्ट का हार्ट ब्रेक जो है वो महसूस हुआ था। एंड ऑन द अदर साइड अर्जेंटीना बिल्कुल आगे बढ़ गई है, मेसी बीइंग मेसी उन्होंने अपना मैजिक फिर से दिखाया है एंड व्हाट अ कमबैक, 11 मिनट में इतने सारे गोल्स अर्जेंटीना ने कर दिया है। लेकिन मोर ऑफ द स्टोरी कह सकते हैं कि इजिप्ट ने भी दुनिया को जरूर याद दिखाया है कि यार कभी कभी हार के भी टीम्स जो है ये दिल जीत लेती है, और ऐसे ही कुछ रहा कल इजिप्ट वर्सेस अर्जेंटीना का मैच। अब चलिए बात करते हैं दूसरे राउंड ऑफ 16 में। कोलंबिया ने स्विट्जरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में हराकर क्वार्टर फाइनल्स की टिकट हासिल कर दी है। अब क्वार्टर फाइनल्स का लाइनअप बिल्कुल तैयार है, यहाँ पर फ्रांस वर्सेज मोरक्को होने वाला है, स्पेन वर्सेज बेल्जियम होने वाला है, नॉर्वे वर्सेज इंग्लैंड होने वाला है, अर्जेंटीना वर्सेज कोलंबिया होने वाला है। अब हर मैच एक फाइनल की तरह ही बिल्कुल होने वाला है एंड यहाँ पर अब सिर्फ टैलेंट काम नहीं करने वाला है, अगर कुछ चीज काम करेगी तो वो है किस तरह से ये सारे प्रेशर्स हैंडल करते हैं ये प्लेयर्स। तो बस देखते हैं आगे क्या कहता है ये वर्ल्ड कप की रेस, कहाँ जाती है और किसके हाथ ये ट्रॉफी लगती है। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अमित मिश्रा की आवाज, शिल्पा राव का साथ, ये अगला गाना ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Mirci. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Hello, sir. Very good evening. सेल्यूलर से बोल रहा हूँ सर, हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊँ। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
2: अच्छा,
3: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
2: के पास है क्या ये सर्विस?
3: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर, जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा, सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
2: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस का?
3: सर आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
2: ठीक है,
3: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
2: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
3: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया, अब आपके बॉस ये सुनेंगे, सुनिए।
2: ये क्या है भैया?
3: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
2: तो वे मशीन चलाने आती भी है
3: सर? मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देखे? देखिए
2: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
3: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
2: मजाक कर रहे तू मेरे से?
3: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, सर सर सर सर सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर आप। हेलो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गालियां नहीं सुन सकता सर,
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गालियां मत दीजिए यार।
3: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया डब हो गए।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
8: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: हाईवे मूवी से ये गाना नूरान सिस्टर्स की आवाज में, और फिलहाल जुड़ गई है आपके साथ ये आवाज जिसका नाम है सिंपली आफरीन। और चलिए यार थोड़ा सा वीकेंड की तरफ बढ़ते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफरीन हियर। और देखिए भाई, वीकेंड इज ऑलरेडी अराउंड द कॉर्नर। आई मीन टुडे इज वेडनेसडे, ठीक है, आज का दिन तो बस निकल ही जाएगा और फिर कल से वीकेंड हमारा शुरू होने वाला है, कल शाम से। सो लेट मी टेल यू क्या क्या इस वीकेंड पर आप कर सकते हो। जैसे हमने कुछ दिन पहले बहुत ही मजे के मैंगोज इंजॉय किए थे इंडियन मैंगो एग्जीबिशन में, अब आते हैं पाकिस्तानी मैंगो की तरफ। ईस्टर्न स्क्वेयर कोसू क्वाकिफ, वहीं जहां पर इंडियन मैंगो एग्जीबिशन हुआ था, वहीं पर ये वाला एग्जीबिशन हो रहा है स्टार्टिंग टुमारो 9th ऑफ जुलाई से लेकर ये चलने वाला है 18th ऑफ जुलाई तक। टाइमिंग्स भी वैसे ही है, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक ये चलेगा। नाउ ये तो बात हो गई मैंगो फेस्टिवल के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बहुत सारे इवेंट्स है, जो एक है टॉय फेस्टिवल, वो जो DCC में चल रहा है, दैट इज गोना हैपन अंटिल 31st ऑफ जुलाई। एंड व्हाट अ फेस्टिवल यार, आई बीन टॉकिंग अ लॉट अबाउट दिस बिकॉज जब बात बचपन की आती है और बच्चों की आती है तो देखो कहीं ना कहीं हमारा दिल तो पिघल ही जाता है। सो आई थिंक सो यू शुड ऑल्सो गो टू रीलिव योर

चाइल्डहुड मोमेंट्स और दोज मोमेंट्स विच यू हैड ड्रीम्ड ऑफ अपने बचपन में, और अब सामने देखकर ऐसा लगता है कि यार क्या यार, हम नहीं तो चलो हमारे बच्चे तो जी पा रहे हैं, ये बड़े अच्छे से खेल पा रहे हैं. सो दैट इज टॉय फेस्टिवल. अब टॉय फेस्टिवल का जो सिलसिला है एक तो उधर है, लेकिन एक एक्टिवेशंस है विच इज हैपनिंग अक्रॉस ऑल द मॉल्स इन खतर. तो ये तो 30 सितंबर तक चलने वाला है, ठीक है ना. यू नेम इट, ऑल द बिग मॉल्स, भले ही वो मॉल ऑफ खतर ही क्यों ना हो, DFC क्यों ना हो, एंड सो मेनी मोर. तो हर जगह पर कुछ ना कुछ, वेंडम मॉल ही क्यों ना हो, देयर इज सम काइंड ऑफ टॉय फेस्टिवल के एक्टिवेशंस हैपनिंग. बच्चे हैं भाई, छुट्टियां चल रही है, ऐसे ना कतर बच्चों को सर पर बिठा के रखते हैं कि भाई आपके दिन है ये, है ना. अब ये तो हुआ बच्चों के बारे में, फिर एक हुआ खाने पीने के बारे में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फुटबॉल फैंस आउट देयर, क्योंकि यार अब क्वार्टर फाइनल्स की बात आ चुकी है, अगले मैचेस जो होने वाले. तो हमारे कतर में भी बहुत सारी जगह पर ये मैचेस का सिलसिला चल रहा है. जैसे एक तो मॉल ऑफ कतर का ओएसिस स्टेज है, दैट्स कॉल्ड द स्नूनू एरिया, वहां पर जोरों शोरों से चल रहा है भाई, बड़ा मस्त माहौल है एंड इट्स ऑब्वियसली फ्री. अपार्ट फ्रॉम दैट, अलमाहा आइलैंड का जो कतर फैन जोन है ना, वहां पर इट्स पेड, बट ऑफकोर्स वेन इट्स पेड ना, तो माहौल भी अपने आप में एक अलग ही है, मजेदार है. वहां पर भी जाकर आप ये मैचेस देख सकते हो, एंड क्योंकि अब आगे बाद गर्मा गर्मी की तरफ बढ़ रही है ना, तो यार मैचेस इस मोमेंट पे ना लोगों के साथ मिलकर देखने में ही बड़ा मजा आता है. विद दिस आफ्रीन ने बहुत सारी बातें ऑलरेडी वीकेंड की कर ली है, अब थोड़ी ही देर में गेम शेम भी खेल ले. मीनवाइल वेरी दयाला नीति मोहन की आवाज में गाना एंजॉय करो, और मिर्शी माइक सदल तक आफ्रीन के साथ. इट्स हॉट.

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची 1. It's hot.

0: वेल बनी दयाल की आवाज मुझे हमेशा वीकेंड वाइब्स देती है. हालांकि आज वेनसडे है एंड आई डोंट नो व्हाई टुडे आई एम ऑलरेडी फीलिंग हैप्पी अबाउट दिस डे. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफ्रीन कोल्ड राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड वक्त हो चला है कि भाई अब चले थोड़ा सा गेम शेम की तरफ आ जाए. यस, लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट है और आज का जो सीन है क्वाइट नॉट पॉपुलर लेकिन यार वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज. क्योंकि यार ये मूवी सबको नहीं पसंद आएगी, मुझे पसंद आती है और वो खास रीजन से. वो क्यों मैं बताऊंगी थोड़ी देर बाद, पहले डायलॉग तो सुना दूं.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट.
2: Myself, Big Boss, Hyderi Kebab.
3: Aoda, Cheap and Best.
4: Hey, Madin! Do shami, do sheek, do biryani, do kofta, char roti, soda pe, do firni, do kulfi.
0: मेरे मुंह में पानी आ गया भाई. फिरनी, कुल्फी और क्या क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर. वेल, कौन सी मूवी है ये आप बताएंगे ना. ये 5000186 इज माई नंबर, व्हाट्सएप नंबर है. वॉइस मैसेज भेजो, टेक्स्ट भेजो, जो मर्जी है भेजो, लेकिन बॉस नाम जरूर लिखो, है ना. चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं विशाल शेखर बी प्राक की आवाज में. Yeah. As I said, यार वीकेंड वाइब्स लग रही है कि नहीं.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: मिलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
3: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, आई वर्क वेरी हार्ड, सो आई नीड दैट फिटनेस लेवल
2: एंड आई नीड योर मोटिवेशन लेवल। मिलिन सोमन, आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: हॉलीवुड बोल डाल, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आपने सुना गुलराज सिंह की आवाज में ये गाना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। यस बॉस, चलो गेम शेम खेल रहे थे हम यहाँ पर, और मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि भाई आज तो हम थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर पूछेंगे। हालांकि ये मेरे लिए नहीं था, लेकिन कुछ लोग के लिए मुझे लगा ये होगा, क्योंकि ये मूवी इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई नहीं है, बट ये मूवी मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज रही है। कौन सा डायलॉग है, कौन सी मूवी है, चलिए पहले डायलॉग सुनते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं।
0: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट।
2: मायसेल्फ बिग बॉस हैदरी कबाब।
3: आवड़ा चिकन बस। ए मदीन, दो शामी, दो शीक, दो बिरयानी, दो कोफ्ता, चार रोटी, सोडा पे, दो फिरनी, दो कुल्फी।
1: हाय यार, इतने सारे खाने के आइटम्स, सुबह के 8 बज गए हैं तकरीबन और मुझे भूख लग रही है भाई। 5 बजे से उठी हुई हूँ और बस अब ये सब सुन के मेरे मुंह में पानी आ गया है। वेल लेट्स टॉक अबाउट दिस मूवी ना। कौन सी मूवी है ये मैं थोड़ी ना बताऊंगी, ये आप ही बताएंगे। हमारी क्यूट सी प्यारी सी परिणीति चोपड़ा, जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट हीरोइंस है। मतलब यार आई कहीं ना कहीं मुझे लगा कि दावत इश्क मूवी जो है ये अंडर रेटेड मूवी रही है। वजह ये क्योंकि जिस तरह से परिणीति ने एक हैदराबादी गर्ल का किरदार प्ले किया है, वो एक्सेंट लेने की कोशिश की है, बहुत ही मजे का था। और साथ ही साथ आदित्य, ही वॉज ऑल्सो रियली गुड इन दिस मूवी। एक्चुअली एक लखनवी तहजीब वाले लड़के की कोशिश की है, बट या फिर अच्छी स्टोरी थी, अच्छी मूवी थी। काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पर जवाब आया है। कमर का मैसेज है, शाहजी अब्दुल करीम का मैसेज है, और फिर ये कौन है, जासिम, ओके इफ आई एम राइट, और इसके बाद अब्दुल रजाक का मैसेज है, राहिल का मैसेज है, नागेश का मैसेज है, और बस द लिस्ट इज लॉन्ग विद दिस। चलिए ये मूवी का एक ऐसा गाना सुनाती हूँ, मैं शायद आपने सुना नहीं होगा, लेकिन शालमली खोलगड़े ने ये गाना बहुत खूबसूरती से गाया है। नाम है गाने का शायराना, फ्रॉम द मूवी दावत इश्क। एंजॉय इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए।
1: बूढ़ी बाबा, मेरे पति को मेरे हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती, क्या करूँ?
0: तो सिंपल है ना, तुम्हारे हाथ की रोटी मत खिलाओ, आंटी की खिला दो।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: यही चीज चाहिए थी संजू. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. संजू राठौड़ की आवाज में ये गाना भी आपने सुना और ये गाने का हमने मराठी प्योर मराठी वर्जन भी सुना है और मी बीइंग अ मुंबईकर मुझे पूरी तरह से समझ में आता है इसके लिरिक्स एंड आई टोटली एंजॉय संजू के गाने, हमेशा मुझे बहुत पसंद है. लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग जिन्हें मराठी नहीं समझ में आती है उनके लिए अब ये गाना आ गया. देखो संजू ने अपना गाने को हिंदी में बना दिया और ये गाना अब धमाल 4 में आपको नजर आएगा. सो इसे कहते हैं म्यूजिक फॉर ऑल, है ना. मैं हूँ आफरीन और शो को आगे बढ़ाने से पहले जरा वक्त बता दूं, मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 8:04 की तरफ और अगला गाना मधुमती बागची जैस्मिन संडस की आवाज में धुरंधर का शरारा धरा प्ले कर ही रही हूं और उसके तुरंत बाद लेकर आ रही हूं वो सारा कंटेंट जो आप देख सकते हो वीकेंड पर ऑन मिर्ची. इट्स हॉट
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: कभी ऐसा हुआ है कि हम मिलेनियल होकर भी आपको काफी आउटडेटेड फील हुआ है? होता है ना कई बार कि भाई टेक्नोलॉजी का कुछ रफ्तार इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि थोड़ा सा वी आर नाउ लिटिल स्ट्रगलिंग टू कैच अप, जैसे जेंजी फटाफट से कैच अप कर लेते, ऐसे ही कुछ हाल ना पेड्रो का है। अब पेड्रो कौन है ये? पेड्रो वो है जो साइबर क्राइम कॉमेडी ड्रामा में फीचर करता है। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीतम एंड पेड्रो, अर्शद वारसी का ये नया वेब सीरीज जो डायरेक्ट किया गया है बाय वन एंड ओनली राजकुमार हिरानी। ये वही राजकुमार हिरानी है भाई जिन्होंने मुन्ना भाई, MBBS लगे रहो, मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स जैसे मजेदार मूवीज बनाए हैं। एंड नाउ हिरानी साहब इज हियर विद द OTT फॉरे विद हिज डेब्यू। अब बड़ा ही मजा आ रहा है ये देखकर, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका ट्रेलर एंड आई थिंक सो यू शुड एक्चुअली वॉच दिस, जहां पर पेड्रो हु इज अ मिलेनियल, हु इज अ कॉप, और वो ना कहीं थोड़ा सा पीछे है ये टेक्नोलॉजी के चक्कर में। लेकिन प्रीतम जो है ही इज अ टेक सैवी यंग हैकर। आप बता दो प्रीतम का जो किरदार प्ले कर रहा है ना वो हिरानी साहब का सुपुत्र ही है वीर हिरानी, एंड इज डन फेयर जॉब फॉर फर्स्ट टाइमर्स। वेल, इतना तो मैंने बता दिया कि ये आप वीकेंड पर देख सकते हो, एंड आई थिंक सो यू शुड नॉट मिस इट, जब बात कॉमेडी की भी आती है, थ्रिलर की भी आती है, सो इट्स अ नाइस ब्लेंड। अब इसके बाद बात करते हैं वो मूवीज के बारे में जो OTT पर रिलीज हुई है, जैसे पति पत्नी और वो दो, इट्स नॉट पति पत्नी और वो, इट्स वो दो। वेल, ये मूवी आई थी थिएटर्स में मई में ही आई थी और अब ये प्रीमियर कर रही है नेटफ्लिक्स पर। वेल, ये मूवी में है आयुष्मान खुराना, सारा अली खान एंड वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह, ये इतने सारे लोग हैं। सो ऐसा कुछ टाइम पास सा देखना है तो ये भी आप देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इक्का नियरली आफ्टर 3 decades आफ्टर बॉर्डर आई कुड से, सनी देओल एंड अक्षय खन्ना दे री यूनाइट इन दिस ग्रिपिंग कोर्टरूम थ्रिलर, जहां पर देओल साहब प्लेज रेनाउंड लॉयर, उसके अलावा वी हैव अक्षय खन्ना, तो उनको बस तारीफ की क्या ही मोहताज है। सो ये भी नेटफ्लिक्स पर है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं OTT के प्लेटफॉर्म पर जो ये वीकेंड पर आप आने वाले वीकेंड पर ज़रूर इंजॉय कर सकते हैं। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो
1: तेजिंदर जी।
0: हाँ जी।
1: हाँ जी तेजिंदर जी, मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस से। आपने अप्लाई कर रखा था पासपोर्ट?
0: जी, हाँ जी किया था।
1: हाँ, ये तेजिंदर जी आपका थोड़ा लेट मिलेगा पासपोर्ट, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था मैंने।
0: कितना लेट मिलेगा
1: आपको इसमें? एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे इनका तेजेंद्र का पासपोर्ट कब मिल रहा है? तत्काल में, आपने तत्काल में बनवाया ना इमरजेंसी में?
0: हाँ जी।
1: एक सेकंड। हाँ इमरजेंसी का है सर, 3.5 महीने बाद मिलेगा आपको पासपोर्ट।
0: 3.5 महीने बाद?
1: हाँ जी।
0: भाई साहब तत्काल का क्या मतलब होता है? 5 दिन में मिलता है तत्काल का? तो
1: सर वो मुझे ही मालूम है, मेरे को क्यों समझा रहे हैं। असल में तेजेंद्र जी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। आपके आसपास कोई है तो नहीं?
0: नहीं कोई नहीं है।
1: ये कह रहा था हमारा एक बंदा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है, ठीक है?
0: अच्छा।
1: बिल्कुल वो डिक्टो कॉपी लगता है आपका, जीरोक्स लगता है। अच्छा, उसको निकलना है दुबई। वो वैसे तो निकल नहीं सकता अपने पासपोर्ट से क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। तो हम कुछ दिन के लिए आपके पासपोर्ट पे से आपका फोटो हटा के ना, आपकी दाढ़ी होती तो चल जाता, उसका फोटो चिपका के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। वो 3-4 आदमियों को ठिकाने लगा के वापस आ जाएगा, तो उसमें 3-4 महीने लगेंगे।
0: क्या बोल रहा है भाई? कौन? हेलो।
1: तो मैं उसको बोल देता हूँ, वो वहाँ पे वो आपके घर पहुँचवा देगा। आप बल्कि वो बंदा ही।
0: हेलो।
1: हाँ बोलिए बोलिए।
0: क्या बोल रहा भाई?
1: आपके पासपोर्ट पे उसका फोटो लगा के आपके नाम से वो दुबई जाएगा, 2-3 को ठिकाने लगाना, वापस आ जाएगा, उसका जरूरी काम है।
0: मैं बोल रहा हूँ,
1: मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ।
0: क्या बोल रहा है? क्या
1: आप इतना भड़क क्यों रहे हो? काम आप थोड़ी करने जा रहे हो, काम तो वो लगाने जा रहे हैं ठिकाने।
0: नहीं, बात क्या कर रहा है? पासपोर्ट पे किसी और को भेज रहा है
1: यार। आप मेरी तेजेंद्र जी,
0: नहीं
1: सोचो वो कितना भड़क रहा होगा। 3 आदमियों को उसको टपका के आना है दुबई में, उसकी भी तो भड़कन सोचो ना।
0: मेरे नाम जाके
1: अरे तो यार आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा, 1.5 महीने के लिए आपका नाम यूज कर रहा है। आपका नाम यूज करने में क्या आपकी गाड़ी मांग रहा है? क्या गाड़ी यूज कर रहा है वो?
0: नाम बता पहले। कौन रहा है?
1: ये लकी डॉ निकल रहे हैं, वरना किसी और तेजेंद्र को भेज देते। आपका मौका लगा, आप ऐसे भड़क रहे हैं उल्टा। मेरी बात सुनिए तेजेंद्र। तेजेंद्र मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और तुम रेडियो मिर्ची पे हो। मुझे शालिनी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुमने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तुम्हारा मुर्गा बनाया भाई। तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें दुबई भेज दूँ, उसे नहीं भेजूं।
2: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: Cute little bangle for the newborn? अरे यार, holiday season is here, और फिर वही gifting का tension. फिर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस. और सुनो, देयर इज मोर. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
4: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
5: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
6: दोनों मिलेगा।
7: का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

वेल मेड ब्रदर्स जान, कनिका कपूर की आवाज में ये गाना राइट इट ऑन मिर्ची. मैं हूँ आफरीन आपके साथ. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है राइट इट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं वो इम्पोर्टेंट बात की तरफ जो इस वक्त पर मैं अक्सर करती हूँ. देखिए एक्सचेंज रेट आज का ये कह रहा है कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.07, वही जनाब पाकिस्तानी रुपीज 76.52. श्रीलंकन रुपीज की बात करें तो इट इज एट 91.78, बांग्लादेशी टाका इज एट 33.93 और नेपाली रुपीज इज एट 41.79. ये थे आज के एक्सचेंज रेट. घर भेजे पैसे ढेर सारी खुशियां एंड खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला 1 एंड ओनली 89.6 मिर्ची 1. इट्स हॉट.

0: चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
1: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चेन चुराई, अब पुलिस इनका चेन छीनेगी।
0: हाँ, पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
1: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply. कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
1: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
0: अभी कॉल करें 3100813।
2: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
3: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
4: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: कैलाश खेर की आवाज में व्हाट अ सॉन्ग यार. मतलब कितने सारे वर्जन्स आए ना तौबा तौबा के, तौबा तौबा काल मूवी का और फिर ऑफ कोर्स विकी कौशल का. बट आई थिंक सो दिस टॉप्स द लिस्ट फॉर मी. Very good morning and welcome back. Simply Afreen का साथ है, writer on Mirchi Mornings. और वक्त हो चला है कि भाई थोड़ा सा गेम शेम फिर से खेला जाए यार. मतलब देखो, जब तक है ना जिंदगी में इस तरह से लाइट मोमेंट्स चलते रहेंगे ना, तो आपके कई भी कितने भी काम हो, जितना भी स्ट्रेस हो, वो थोड़े से देर के लिए क्यों ना सही, वो चंद मोमेंट्स के लिए क्यों ना सही, आप थोड़ा सा लाइट फील करते हो. करते हो कि नहीं करते हो, आई एम श्योर. सो चलिए, यहाँ पर मैं अभी आपको डायलॉग सुनाने वाली हूँ. डायलॉग नहीं, इट्स मोर ऑफ आवाज ऑफ अ सेलिब्रिटी. एक इंटरव्यू की आवाज़ होगी, एनीथिंग इट कुड बी. सो यू हैव टू गेस कि ये कौन सी सेलिब्रिटी की आवाज़ है आखिर. सो रेडियो स्विच के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से आवाज़ सुनो.
2: 70-75 के बाद आपके समझ में आती है जिंदगी क्या है. उसी को आप 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में समझ जाते हो तो आपके लिए 40 साल जिंदगी है. वाह वाह, उसको अच्छी तरह जी सकते हैं.
1: ये राइट, क्वाइट कंफ्यूजिंग राइट, क्योंकि इनकी आवाज में तो हमेशा हमने जोक सुने, मजाक सुने, और मतलब ही हैज ऑलवेज बीन दैट चुलबुला कह सकते हैं एकदम, है ना. बट अब इतनी सीरियस बातें इनकी आवाज में सुना नहीं है. कुड बी द रियल साइड. हमने तो हमेशा रील वाली साइड देखी है. 5000-1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर. फटाफट से यहाँ कनेक्ट करो और बताओ कि आखिर ये आवाज किसकी थी. फिर से सुनाओ क्या अब.
2: 70-75 के बाद आपके समझ में आती है जिंदगी क्या है. उसी को आप 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में समझ जाते हो तो आपके लिए 40 साल जिंदगी है. वाह,
1: ऑल राइट, अब तो समझ गए होंगे ना इतने सारे हिंट्स भी जो मैंने दिए हैं. तो चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं. सनम पुरी, शिप्रा गोयल की आवाज में. हंसी तो फंसी से ये गाना, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स. एंजॉय इट ऑन मिर्ची, माइक से दिल तक आफरीन के साथ. इट्स हॉट.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: Govinda, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
2: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
1: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
2: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
1: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
2: ये तीनों एक्टर्स ऐसे इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
1: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न। अरे यार, हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर्स मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिवीजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
4: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
6: बार बार।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
7: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखिए सचिन टंडन परंपरा टंडन की आवाज में सैयारा का ये गाना, आई एम स्टिल हुक्ड टू सैयारा का एल्बम। ठीक है, अब अभी भी अगर मुझे ड्राइव करना है, थोड़ा सा लॉन्ग है, मैं सैयारा का एल्बम लगा लेती हूँ। एंड इट्स बीन 2025 और 2026 आया है अब तक के, नो वन हैज रीच्ड क्लोज टू द सक्सेस ऑफ सैयारा'स म्यूजिक। Very good morning and welcome back. Subhi Afreen ka saath hai right here on Mirchi Mornings. And well, my friends, aaj to maine aisi yu googly phenki thi aapke paas ki aap sambhal nahi pa rahe the, ya phir bahut sare smart log to hote hi hai hamare saath hamesha se jo bilkul sambhal bhi pate hai aur Afreen ko aisa muh tod jawab bhi dete hai. Mujhe acha lagta hai yaar. Kis bare mein baat kar rahi hai Afreen? Well, bata do, yahan par wo game chal raha tha jise main kehti hu pehchan kaun, wo आवाज पहचानिए जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ और गेस करना है कि भाई ये कौन से सेलिब्रिटी है। सो हियर इट गोज।
2: 70-75 के बाद आपके समझ में आती है जिंदगी क्या है, उसी को आप 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में समझ जाते हो तो आपके लिए 40 साल जिंदगी है। वाह वाह,
1: ऑल राइट। इनकी आवाज में इतनी सीरियस बातें हमने कभी भी नहीं सुनी थी, है ना। अब आपने तो आवाज पहचान ली है, किसकी है वो भी मैं सुना देती हूँ। चलिए
3: मैडम, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग।
3: हाँ
1: ओके यादव जी, दैट्स राइट। ऑल राइट, हाय। That is right, Astrid. बिल्कुल सही पहचाना है तुमने। और साथ ही साथ तुम्हारे साथ यहाँ पर अमित का भी मैसेज आया है, ताहिर का मैसेज है, विवेक का मैसेज है, देन आई ऑल्सो हैव अहमद मोहम्मद का मैसेज, फिर और कौन है यहाँ पर, कौन है कौन है कौन है, बहुत सारे लोग है। सफा का मैसेज, विद दिस जॉनी लीवर इज द राइट आंसर। एंड एज वी ऑल नो ये कहानी, या फिर नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि भाई जॉनी लीवर का जो नाम है वो लीवर जो है उनका नाम तो एक्चुअली जॉन प्रकाश राव है, ठीक है ना। बट ये लीवर कैसे पड़ा, क्योंकि वो हिंदुस्तान यूनिलीवर में ही वाज अ मैन्युअल लेबरर, और जब कंपनी के इवेंट्स होते थे ना तब ये वहां पर थोड़ा बहुत स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, मिमिक्री करते थे, उनके जो बॉसेस हैं उनकी मिमिक्री करते थे। एंड दैट्स हाउ ही रोज इन हिज करियर के, और फिर जहां से उनकी शुरुआत हुई है ना, ही फेल्ट रूटेड, ही केप्ट हिमसेल्फ ग्राउंडेड कि नहीं यहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। उनको जॉनी लीवर का जो खिताब मिला था उन्होंने जिंदगी भर अपने साथ रखा है। एंड डेफिनेटली ही इज रिगार्डेड एज इंडियाज फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडियन, ऑफकोर्स द कॉमेडी किंग जॉनी लीवर। और बस यही बातें थी जॉनी लीवर के बारे में। अब अगले गाने की तरफ आगे बढ़ते हैं, महमूद राघव चैतन्य रुआ के की आवाज़ में। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची। इट्स ऑल

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मेरे घर के पास बहुत कबूतर है, परेशानी होती है यार, क्या करूं?
1: तुम्हें जो पता है कि इतने सारे कबूतर हैं, तो घोंसले के बाजू में घर मत बना, समझा?

0: और आ गई मैं भी यहाँ पर. वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टर इनको. और देखिए भाई, इस गाने के तुरंत बाद हम जरा फुटबॉल की बातें फिर से करेंगे. वैसे मैं दो बार करती हूँ एज पर योर रिक्वेस्ट के भाई आफ्री फुटबॉल का जरा बहुत इधर एक्साइटमेंट चल रहा है, तो दो बार जरा स्कोर अपडेट्स वगैरह बता दीजिएगा. तो मैंने वैसे ही सोचा है और अब थोड़ी देर में लेकर आऊंगी कि कल क्या हुआ और कल क्या होने वाला है, मतलब आने वाले दिन में क्या होने वाला है. लेकिन उससे पहले जरा वक्त मिला लेते हैं, मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है 9:05 की तरफ.
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

देखो ऑनेस्टली दिल तो कोई और ले गया कोई. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और वर्ल्ड कप की बात चलो करते हैं आज, फुटबॉल वर्ल्ड कप की. और बात ना आज मैं सिर्फ गोल से शुरू नहीं करूंगी, आज बात करते हैं अबाउट अ टीम एंड अबाउट वन पर्सन हु हैज लेड अनदर टीम वेरी ब्यूटिफुली एंड अबाउट वन टीम जिसने अपना पूरी एनर्जी, एफर्ट्स, इमोशंस और सारे. कल का जो मैच था इट वॉज फिल्ड विथ थ्रिल, इट वॉज फिल्ड विथ इमोशंस, इट वॉज फिल्ड विथ एक्साइटमेंट. और क्या नहीं, मतलब एक ही मैच में इतने सारे इमोशंस देखने मिले. वेल आई एम टॉकिंग अबाउट अर्जेंटीना वर्सेज इजिप्ट, जहां पर अर्जेंटीना ने इजिप्ट को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली. लेकिन ऑनेस्टली इस मैच के बाद बात सिर्फ अर्जेंटीना की कमबैक विक्ट्री की नहीं हो रही है. इनफैक्ट इजिप्ट जो 2-0 से लीड कर रहा था, उनका एक गोल वीएआर के बाद डिसअलाउ हुआ और कुछ डिसीजंस पर उनके प्लेयर्स और कोच ने भी काफी ओपनली डिसअपॉइंटमेंट भी एक्सप्रेस की. लेकिन देखिए, मैं रेफरी के डिसीजंस पर फाइनल जजमेंट ये सब कुछ देना मेरा काम बिल्कुल नहीं है, बात करना मेरा नहीं है. क्योंकि देखिए फुटबॉल जो है इसके रूल्स और वीएआर के एंगल्स टेक्निकल होते हैं एंड मी बीइंग जस्ट अ व्यूअर आई एम नॉट इनटू फुटबॉल मच. बट कहीं ना कहीं मुझे एज अ न्यूट्रल व्यूअर भी कल ये लगा कि इजिप्ट का हार्ट ब्रेक सच में फील हुआ उनकी आवाज में, वो पेन आफ्टर द मैच. लेकिन नॉनदलेस अर्जेंटीना जो है वो आगे बढ़ गई है. मेसी का मैजिक हमने फिर से देखा. लेकिन इजिप्ट ने भी दुनिया को जरूर याद दिलाया कि कभी कभी हार कर भी टीम दिल जीत लेती है. वो कहता है ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. इस तरह से कुछ हाल रहा है उनका. वेल लेट्स टॉक अबाउट द राउंड ऑफ 16 में दूसरी मैच के बारे में, दैट इज कोलंबिया वर्सेस स्विट्जरलैंड, जहां पर कोलंबिया ने स्विट्जरलैंड को पेनल्टी शूट आउट में हरा कर क्वार्टर फाइनल्स की टिकट बिल्कुल हासिल कर ली है. एंड अब क्वार्टर फाइनल्स के सारे धुरंधर बिल्कुल मौजूद है. उनका लाइनअप कुछ इस तरह से है दैट फ्रांस वर्सेस मोरक्को होने वाला है, स्पेन वर्सेस बेल्जियम होने वाला है, नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया. देखिए अब हर मैच एक फाइनल जैसा होने वाला है और यहां सिर्फ अब टैलेंट से काम नहीं चलने वाला है बॉस, प्रेशर हैंडल करना इस सिचुएशन में ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड देखिए वर्ल्ड कप हमें हर बार एक बात सिखाता है, एक ट्रॉफी सिर्फ एक टीम जीती है लेकिन कुछ परफॉर्मेंसेस और कुछ इमोशंस और कुछ गेम्स इट स्टेज विथ यू फॉर एवर. एंड प्रोबेबली दैट वॉज वन ऑफ द यस्टरडेज मैच कुड बी दैट. मैं हूँ आफरीन, माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची. अगला गाना नकाश अजीज और अंतरा अमृता की आवाज में.

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hi, ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
5: विकी जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
3: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
5: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
3: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
5: हाँ जी,
3: हाँ बोलिए।
5: 33501।
3: अच्छा
5: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
3: हेलो,
5: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
6: हाय।
5: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
6: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
5: धोबी से
6: पूछ लीजिए।
5: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
3: हेलो
5: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
7: ये बेल जा रही है।
5: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
3: अरे भाई, तो एक बात सुन, ये आपके हो
5: पास
3: क्या है?
5: आपके पास पासवर्ड होगा 33501। हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
3: किस से पूछे जा रहे हैं?
5: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
3: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
5: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
3: मुझे बताना है सबको, थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह
5: नहीं तो आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
8: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
3: किसने दिया मेरा नंबर?
8: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
3: अरे कुकड़ू।
9: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
10: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
11: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
12: हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के?
9: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
12: कम है के?
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

स्मेल इसे कहते हैं टू मच टू प्रोसेस. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. और थोड़ी देर पहले हम फुटबॉल के स्कोर्स बता रहे थे यहाँ पर वर्ल्ड कप का जो चल रहा है. एंड टू मच टू प्रोसेस फॉर मी यार. कल जस्ट आपकी ही तरह सबकी नजर ना एक ही मैच पर थी, अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट. इमोशंस, ड्रामा, कमबैक, सब कुछ था उसमें. लेकिन इसी वर्ल्ड कप के फ्लो में आप जो सोचते हो, जो एक्सपेक्ट करते हो, वही कह देते हो. ऐसे ही कुछ हाल मेरे साथ हुआ. जैसे मैंने कहा कि भाई अब अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया होगा, क्योंकि यार वो मुझे ऐसा था कि भाई वही स्पाइसी रीमैच देखने मिलेगा हमें जो हमने कोपा अमेरिका में देखा था, जहां कोलंबिया ने अर्जेंटीना को

आया था और ऐसी कुछ उम्मीद लग रही थी, लेकिन नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर स्विट्जरलैंड ने स्क्रिप्ट ही बदल दी। बस अब स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को 0-0 के पेनल्टी के शूटआउट के बाद 4-3 से बिल्कुल हराकर क्वार्टर फाइनल्स में अब ये भिड़ने वाले हैं अर्जेंटीना के साथ में। अब देखते हैं बॉस, दैट अर्जेंटीना का ये जो चार्म है, ये मैजिक है, ये वही चलने वाला है या फिर स्विट्जरलैंड का डिसिप्लिन और कोई नई स्ट्रैटेजी काम आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल वक्त मैं बताऊंगी कि बज रहे हैं 9:22 और अगला गाना सुनील चौहान की आवाज में अगला, और साथ देते हुए दिव्या कुमार, राइट इट ऑन मिर्च, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल विशाल ददलानी और पायल देव की आवाज में ये गाना राइटर और मिर्ची। और देखो भाई, स्माइल तो सभी के पास होती है ना, लेकिन कुछ स्माइल्स के पास एक छोटा सा बोनस फीचर होता है। क्या होता है पता है? दैट इज डिम्पल्स, है ना। मतलब यार, किसी के डिम्पल्स आते हैं मुस्कुराते हुए तो कितने प्यारे लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो डिम्पल्स है, ये एक हैबिट या एक्सप्रेशन नहीं होती है, बल्कि एक जेनेटिक फिजिकल ट्रेट होता है। जब हम स्माइल करते हैं ना, चीक की एक मसल और स्किन का कनेक्शन थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए गालों पर वो छोटा सा डेंट नजर आता है। एंड कुछ लोग का एक डिम्पल जो होता है, जो हु आर बॉर्न विथ इट, कुछ लोग के दोनों गालों पर डिम्पल्स होते हैं, कुछ लोगों की चिन पर होता है। और आज आफ्रियन डिम्पल्स के बारे में क्यों बात कर रही है? क्योंकि यू नो व्हाट, टुडे इज डिम्पल्स डे, ऐसा भी दिन होता है। एंड दोज हु हैव डिम्पल्स ऑन देयर चीक्स ना, दे विल रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग। भाई मतलब एक एडिशनल बोलते हैं ना, हमारे पर्सनैलिटी में, हमारे स्माइल में एक एडिशनल एक चीज होती है खूबसूरत सी, जो डिम्पल्स है ना, रियल ब्यूटी डिम्पल से नहीं, स्माइल से ही शुरू होती है वैसे, लेकिन एक खूबसूरत स्माइल जरूर लगती है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन देखिए, अगर आप उन लकी लोगों में से है जिनके गालों में क्यूट सा डिम्पल आता है, तो लेट्स सेलिब्रेट दैट, सेंड मी योर फोटोज ना, मैं भी तो देखूं कि आपके कितने क्यूट क्यूट डिम्पल्स है। 5000186 इज माई व्हाट्सएप नंबर, सेंड मी योर पिक्चर्स राइट अवे। एंड आप जानते हो, मैं भी जब मुस्कुराती हूँ ना, हल्के से, बिल्कुल हल्के वाले डिम्पल्स मुझे भी आते हैं। चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, अमी मिश्रा की आवाज में, जहाँ पर हमने हंसी स्माइल ये सब की बात की है। तो प्लेइंग वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कदर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है।

0: शंकर महादेवन की आवाज में ये गाना रॉकफोर्ड मूवी से है और ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि उस वक्त पर जब ये मूवी रिलीज हुई थी आई वाज आल्सो तकरीबन सेम एज की स्कूल में थी और बड़ी मस्त स्कूल लाइफ जो दिखाई गई है इसमें। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को और वक्त हो चला है कि थोड़ी सी अब बातें की जाए लेकिन थोड़ी सी गहराइयों के साथ में। जब इस वक्त पर आफरीन अपनी डायरी से कुछ लाइंस कहती है और आज ना आफरीन ने जॉन एलिया साहब की एक शायरी आपके लिए खास ढूंढ कर लेकर आई हूँ जो कुछ इस तरह से।
1: आफरीन की डायरी से शायरी
0: तो अर्ज किया है, इश्क उससे करो जिसमें खामियां बहुत हो, इश्क उससे करो जिसमें खामियां बहुत हो, ये हुस्न से भरे चेहरे इतराते बहुत है। और मोहब्बत रूह से होनी चाहिए, मोहब्बत तो रूह से होनी चाहिए, लफ्जों से जताने वाले रुलाते बहुत है। क्या बात है भाई, ये जो अल्फाजों का खेल है ये सारे ये खूब जानते ये शायर है ना। एंड आई रियली लाइक दीज प्ले ऑफ वर्ड्स जो कहते हैं। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट योर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: अमर अर्शी और बादशाह की आवाज में साथ तो ही नेहा कक्कर, दैट वाज काला चश्मा, एक ऐसा गाना जिसके बगैर मेरे ख्याल से आजकल कोई शादी संगीत कंप्लीट हो ही नहीं सकती। और यहाँ से जब तक के हम इत्मीनान से आपको टाटा बाय बाय कहते हुए दो चार बातें ना कर ले, तब तक हमारा दिन थोड़ी ना खत्म होएगा यार। जी नहीं भरता, सच कहूँ तो भाई मेरे लिए ना ये जो चार घंटे होते हैं ना, मेरे दिन के हाईलाइट मोमेंट होता है। और मेरे ख्याल से ना हर एक के जिंदगी में, हर एक के दिन में एक ऐसा मोमेंट होता है या फिर वो ऐसा वक्त होता है, भले ही वो दो मिनट क्यों ना हो, भले ही वो पाँच मिनट क्यों ना हो, जहाँ पर आपको ना वो चीज़ करना पसंद होता है और आपको ना सुकून मिलता है। ऐसा क्या है आपकी जिंदगी में, मुझे जरा बताइए। देखिए, वन मोर थिंग इज दैट आई लाइक टू ड्राइव, मतलब मैं जब अकेले ड्राइव करती हूँ और कुछ अपने हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से कोई गाने लगाती हूँ या रेडियो सुनती हूँ, दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच रियली पुल्स मी आउट ऑफ द रियल वर्ल्ड, ऐसा मुझे लगता है। आपका वो कौन सा मोमेंट है दिन का, ठीक है, जो करके आपके दिल को ना बड़ी खुशी मिलती है, भले ही वो एक करक ही क्यों ना हो कि यार मुझे मेरी करक जो है, मुझे मेरी चाय बड़े सुकून से पीनी है और जब तक कि मैं वो पी ना लूँ मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती है। आई वॉन्ट टू नो द हाईलाइट मोमेंट ऑफ योर डे। मैं हूँ आफ्रीन, माइक से दिल तक। व्हाट्सएप नंबर वैसे मेरा 5000 1896 है और लेना चाहूंगी अलविदा। मिलूंगी आपको जल्दी, दैट इज कल, सेम टाइम सेम शो, आपकी सुबह वाली आदत यानी मिर्ची मॉर्निंग्स पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चाचा बाय बाय, सायोनारा, एंड विशिंग यू कि आपका पूरा दिन ही शानदार हो, नॉट ओनली शाम। अमित त्रिवेदी की आवाज, ब्रिंगिंग दैट मैजिक राइट ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रंग पापनी पाने की पावर पैक आवाज एंड ड्रामा वो तो अब शुरू होगा. हविंग से दैट मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:07.
1: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: वैसे यार सच कहूँ, ज़िंदगी में ना कभी कभी ड्रामा भी होना चाहिए, एक्शन भी होनी चाहिए, तभी तो इवेंचुअली जो फिल्म होगी वो काफी कमाल होगी. गुड मॉर्निंग, मतलब सुबह सुबह आपसे मुलाकात हो गई, सुबह सुबह आपसे बातें हो रही हैं, सुबह सुबह आप और हम कनेक्टेड हैं. ज़रा बताएं इससे खूबसूरत बात एक सुबह को शुरू करने के लिए मेरे लिए और क्या हो सकती है. नहीं एक्चुअली अगर मैं अपनी मॉर्निंग्स की बात करूँ तो वो तो बस अभी अभी हुई है. वेल आई एम प्रीटी श्योर आपका दिन जो है ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से शुरू हो चुका है. अपने अपने ठौर ठिकाने पर, अपने अपने डेस्टिनेशन पर आप निकल चुके हैं. आप में से कई लोग ऑफिस शुरू होने के बाद अब तक शायद मीटिंग्स में जा रहे होंगे. कईयों की किटी पार्टी जो है वो इन वक्त शुरू हो चुकी है. एंड आओ बहन चुगली करें इस अभियान की शुरुआत बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है. यार सच कहूँ, मुझे ना बचपन से ही एक बात सिखाई गई है कि अगर ज़िंदगी को हम देखने की कोशिश करें ना तो ये किसी रंग मंच से कम नहीं है. मतलब लाइफ जो है ये किसी थिएटर से कम नहीं है. और हम हर एक शख्स जो है ना अपना अपना किरदार निभाने के लिए, अपना अपना रोल प्ले करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं. अब जिंदगी एक रंग मंच है तो यहाँ पे कई तरह के लोग हमको नजर आते हैं, कई तरह के किरदार हमको नजर आते हैं. कई हमें कम अच्छे लगते हैं, कई हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं. कई बार हमें खुद का किरदार ही कम अच्छा लगता है, कई बार खुद का किरदार काफी अच्छा लगता है. लेकिन एक बात मुझे पापा ने जरूर सिखाई है, अगर इसे रंग मंच की तरह देखोगे, जो भी किरदार दिया गया है उसे बखूबी अपने एंड से बेस्ट निभाना है ये सोचोगे, और बाकी बातें जो कम अच्छी लगे बस यही समझ जाओ यार थिएटर है, ये तो आना जाना है, होते रहना है. तो कोई बात लाइफ में ना ज्यादा अच्छी लगेगी ना ज्यादा बुरी लगेगी, लेकिन तुम जो हो, तुम्हारा जो किरदार तुमको दिया हुआ है उसे बेस्ट तरह से करना है और खूब अच्छी तरह से करना है. इस बात में डिटर्मिंड रहते हुए बस लाइफ में आगे बढ़ते ही जाना है. चलिए जी, सुबह सुबह मोटिवेशन का डोज जो है वो काफी हो गया. आप एक काम कर लें, इस वक्त मेरे इस रंगमंच में अगर आप कनेक्टेड हैं तो मुझे जल्दी से गुड मॉर्निंग वाला मैसेज भेज दें. 5001896 I'm eagerly waiting for your messages. Instagram Mirchi One Kadatya Mirchi Anshu. Meanwhile, Guru Randhawa ki awaaz and a brand new track aapke liye enjoy. Bandi ka naam Anshu.
1: Mirchi, fresh maal.
2: Dhamal 4 mein dhamal machane aa raha hai keher.

0: इस गाने को आवाज दी है गुरु रंधावा ने। म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय गुरु रंधावा, गिल मचरई एंड रॉनी अजनाली। धमाल फोर से सुनते रहिए कहर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो
2: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं सेल्यूलर से बोल रहा हूँ। सर हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊँ। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
1: अच्छा,
2: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
1: सर
2: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर, जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा। सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
1: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस का?
2: सर आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
1: और ठीक है,
2: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
1: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
2: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया। अब आपके बॉस ये सुनेंगे, सुनिए।
1: ये क्या है भैया?
2: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
1: तो फिर मशीन चलाने आती भी है
2: सर? मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देखे? देखिए
1: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
2: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
1: मजाक कर रहा है तू मेरे से?
2: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, सर सर सर सर सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर आप। हेलो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गालियां नहीं सुन सकता सर,
3: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गालियां मत दीजिए यार।
2: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया है, डबोगे
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: चौहान की खूबसूरत से आवाज, प्रीतम चक्रवर्ती की कंपोजिशन, एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म लव आजकल। यार अगर अल्फाज की बात करूँ तो एक बार फिर से मैजिकल पूरा का पूरा एक्सपीरियंस किसी ने दिया तो वो है इरशाद कामिल। इम्तियाज अली जब भी आते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि किस तरह से, चाहे स्टार कास्ट की बात करें, म्यूजिक की बात करें, शब्दों की बात करें, उसका जादू जो है ना हमारी जिंदगी में बहुत अच्छी तरह से चला सके। एंड सैफ अली खान एंड दीपिका पादुकोण, क्या गजब का डुओ। चलिए यार, ये आपको प्यारा सा गाना तो मैंने इस वक्त सुना दिया, लेकिन कल के एक्सपीरियंस के बारे में बात ना करें आप और हम, ऐसा हो सकता है क्या?
1: मिर्ची अंशु
0: कल का मैच देखा? मतलब अगर कल का मैच ना देखा तो क्या ही देखा। देखो मैं हर वक्त एक बात कहती हूँ तुमसे कि चाहे तुम एक पर्टिकुलर स्पोर्ट को फॉलो करते हो या ना करते हो, लेकिन अगर दुनिया में कोई ऐसा बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है ना, उसे देखना ज़रूर। देखना इसलिए क्योंकि ज़िंदगी के बहुत सारे लेसन एंड वैल्यूज़ जो है ना इस बात में समझ में आते हैं। हाँ जी यार, अजल जो है ना बड़ा खुश है, खुशी से गदगद है। एंड सच कहूँ कल की परफॉर्मेंस को देखने के बाद ना, इतना ही कहना चाहूँगी कि आज हर एक सोशल मीडिया में एक ही बात आ रही है कि मेसी ने सिर्फ और सिर्फ 13 मिनट्स में पूरा गेम जो है वो बदल ही दिया। लेकिन नहीं यार, गेम 13 मिनट्स में नहीं बदला, उस 13 मिनट्स के पीछे 25 साल की प्रैक्टिस है, हजारों सुबह की ट्रेनिंग है, काउंटलेस फेलियर्स हैं, मिस्ड पेनल्टीज हैं, प्रेशर है, क्रिटिसिज्म है, एंड उसके बाद भी हर एक मोमेंट के लिए मेंटली रेडी रहना सबसे बड़ा ड्राइव तो ये है। यार कल भी देखिए ना, अगर मैं मेसी की बात करूँ तो उनकी पेनाल्टी जो है वो मिस हुई, मीडिया के पास हेडलाइंस जो है वो पूरी तरह से रेडी थी, लेकिन लेजेंड्स वही होते हैं जो एक मिस्टेक को कभी भी अपनी आइडेंटिटी बनने नहीं देते हैं। मेसी ने टाइम एंड अगैन इस बात को प्रूव किया, साथ में रेस्पॉन्ड किया। यार मतलब कल का मैच अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अर्जेंटीना की पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करूँ तो 79th मिनट में क्रिश्चियन रोमेरो आते हैं और एक कमबैक लेकर आते हैं, एक नई उम्मीद जो है सबके दिल में, सबसे बड़ा ड्राइव तो ये है। यार कल भी देखिए ना, अगर मैं मेसी की बात करूँ तो उनकी पेनाल्टी जो है वो मिस हुई, मीडिया के पास हेडलाइंस जो है वो पूरी तरह से रेडी थी, लेकिन लेजेंड्स वही होते हैं जो एक मिस्टेक को कभी भी अपनी आइडेंटिटी बनने नहीं देते हैं। मेसी ने टाइम एंड अगैन इस बात को प्रूव किया, साथ में रेस्पॉन्ड किया। यार मतलब कल का मैच अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अर्जेंटीना की पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करूँ तो 79th मिनट में

comes the equalizer. And finally, जब stoppage time आता है उस समय Enzo Fernandez जिस तरह से game को finish करते हैं पूरी की पूरी story को बदल देते हैं. What a comeback! They certainly deserve a massive, massive round of applause. And मैन मैं फिर से एक ही बात कहना चाहूंगी कि अर्जेंटीना की टीम ने ना टाइम एंड अगेन ये प्रूव किया है कि उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अपने एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए, अपनी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए किसी की गेम को पलटना है तो किस कदर पलटना है. यार तभी तो कहते हैं कि लेजेंड्स आर नॉट बिल्ट इन अ डे, दे आर बिल्ट एवरी सिंगल डे विद एवरी ट्रेनिंग, एवरी सेशन, एवरी फेलियर एंड एवरी कमबैक. एंड लेकिन हाँ, इस वक्त चाहे हम अर्जेंटीना की तारीफ दिल खोल के कर रहे हैं, लेकिन भाई इजिप्ट के लिए भी क्या ही बात है, तालियां तो उनके लिए भी बजनी चाहिए. क्या बात है, मतलब क्या फिनोमिनल फुटबॉल खेला है कल उन्होंने. दे लिटरली पुश द डिफेंडिंग चैंपियंस टू देयर एब्सोल्यूट लिमिट एंड दिस इज व्हाट मेक्स द वर्ल्ड कप मैजिकल. तो चलिए यार, अगर इस वक्त आप इस स्पोर्ट को फॉलो कर रहे हैं, मैचेस देख रहे हैं, स्कोर्स ही देख रहे हैं, इस वक्त इस मुकाम में आने के बाद आपको क्या लग रहा है कि वो कौन सी चार टीमें हैं जो सेमीफिनाले में पहुंचेंगी? क्या कहता है आपका दिल? 5000 1896 5000 1896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. मीनवाइल एक काम करते हैं, हीर एंड पैराडॉक्स की आवाज में गिनी विद सनी 2 से ये गाना है जो रिक्रिएटेड वर्जन है लेकिन मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है, आप तक पहुंचाती हूँ. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: अच्छी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
2: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
7: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मतलब नूर की आवाज़, श्रेया घोषाल का साथ, एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़ यार, क्या प्यारा सा खूबसूरत सा गाना। एंड ये गाना जो है अभी अभी बस रिलीज हुआ था कुछ महीने पहले फ्रॉम द फिल्म भूल चूक माफ, एंड इसमें अगर आपको कोई नजर आए थे तो वो है राजकुमार राव एंड वामिका गब्बी, म्यूजिक येट अगेन ब्यूटिफुली डन बाय तनिष्क बाख्शी एंड अरशाद कामिल। तुम्हारी तो मैं दिल से बड़ी वाली फैन हूँ यार।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aajyanshu with you. आपकी और मेरी जिंदगी में मिठास है, मिठास के साथ स्पाइस का तड़का है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन लेकर तो उस वक्त मैं आ चुकी हूँ। लेकिन अभी मैं दिल से किसी को थैंक यू बोलना चाहूंगी। भाई मैंने आपसे कुछ देर पहले पूछा था कि अगर मैं आपसे प्रिडिक्ट करने की बात करूँ कि बस ये कौन सी चार टीम्स हैं जो शायद सेमीफिनाल में इस बार वर्ल्ड कप में पहुंच सकती है, बहुत सारे रिप्लाईज आए हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का कहना जो है वो सेम ही है यार। देखिए एक रिप्लाई आया है मुबस्सर मंसूर की तरफ से एंड वो कहते हैं द सेमीफाइनलिस्ट वुड बी फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना। यही जो है एकदम डिक्टो प्रिडिक्ट किया है अहमद ने, साथ ही रोहित का भी काफी हद तक यही कहना है। लेकिन यूसुफ भी है जो कह रहे हैं कि वैसे तो ये फुटबॉल काफी हद तक देखते नहीं है लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि अर्जेंटीना जो है शायद इस बार भी जीत सकती है। बढ़िया है जी, अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या। लेकिन आप जो है इस वक्त मुझे कुछ और बताने की तैयारी कर दे क्योंकि मेरा दिल जो है ना पूरी तरह से इस वक्त अगर कुछ हो चुका है एक बार फिर से तो वो है फिल्मी। हैविंग सेड दैट, वक्त हो चला है कि आप और हम खेल लें आज का।
2: शुरू होता है बॉलीवुड का सरप्राइज टेस्ट।
0: ऑलराइट देन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्सेशन है जो बहुत ही गजब की बॉलीवुड फिल्म से है जो इस वक्त मैं आपके बीच पेश करूंगी। आप सुनेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एंड मुझे ये बताएंगे कि ये कॉन्वर्सेशन हो रही है तो किन चार लोगों के बीच हो रही है एंड साथ ही ये आइकॉनिक फिल्म है तो आखिरकार है कौन सी। यार देखो वैसे तो बॉलीवुड की हर एक फिल्म जो होती है ना ये काफी कमाल एंड काफी लाजवाब होती है लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो ये इंश्योर करती हैं कि आप और हम जो है ना अपनी जिंदगी में अगर कुछ करें तो बहुत अच्छी तरह से हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें एंड ये फिल्म हमारी लाइफ में ऐसा काम जरूर करने वाली है। अब ये कौन सी है ये मैं आपको जरूर बताऊंगी लेकिन इस अगले एक गाने के बाद, तो खुद का सीट बेल्ट जो है ना पूरी तरह से टाइटन कर लें एंड क्वेश्चन सुनने के लिए तैयार हो जाइएगा राइट आफ्टर द स्ट्राइक। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: हेलो अमजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म डंकी। भाई कोई आप पे खुद को पूरी तरह से न्योछावर कर दे, इससे ज्यादा किसी को चाहिए तो क्या ही चाहिए। एक बार फिर से प्रीतम की एक कमाल की कॉम्पोजिशन, इरशाद कामिल के गजब के शब्द। इस फिल्म को अगर किसी ने डायरेक्ट किया तो वो है राजकुमार हिरानी। ऑन स्क्रीन इस गाने में आपको और हमको कोई नजर आए तो वो है वन एंड ओनली द किंग खान, यानी कि शाहरुख खान एंड तापसी पन्नू। चलिए जी, आपको ये गाना तो सुना दिया, लेकिन अब से कुछ देर पहले जिस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तैयार कराया था वो टेस्ट भी अब आपका हो जाए। तो अब मैं आपके बीच पेश करने वाली हूँ एक कॉन्वर्सेशन, आपको सुनना है, आइडेंटिफाई करना है, मुझे ये बताना है ये है तो है किस फिल्म से। एंड इसके अलावा अब से कुछ देर में इसी फिल्म से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अपडेट है जो मैं आप तक पहुंचाऊंगी, आप तक पेश करूंगी। सो हियर वी गो।
1: ग्रेट मिस्टर श्याम, आपने M.Com किया है?
2: जी।
1: मिस्टर राजू, ये कौन सी डिग्री है आपकी? ITUS?
2: जी एक्चुअली इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट, ITUS, ये मेरा डिग्री है।
1: ये तो कोई मराठी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है।
2: हाँ।
1: कहाँ तक पढ़े हैं आप?
2: दोपहर तक।
1: What?
2: सुबह मेरा बाप मेरे को स्कूल पे छोड़ के गया और दोपहर को पूरी स्कूल मेरे को घर पे छोड़ के गए ये सर्टिफिकेट के साथ।
0: क्या बात है यार, ये तो बिल्कुल हमारे आज एक गौरव की कहानी बयां करके गए। आप मुझे बड़ा मुझसे ये बताएं कि भैया ये कौन है जिनकी बातचीत चल रही है और ये फिल्म है तो कौन सी है। 5000 1896 5000 1896, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। जल्दी जल्दी अपना जवाब भेजें, कुछ देर में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा अपडेट है जो आप तक पहुंचेगा। मीनवाइल बंजारी की आवाज एक ब्रांड न्यू ट्रैक आप तक फिर पहुंचाती हूं आपके इंतजार के जवाब के साथ। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।

0: ललित सिंह की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। द म्यूजिक इज कंपोज्ड बाय श्रेयस पुरानिक। फिल्म का नाम एनिमल एंड इसके लिरिक्स की बात करें तो इसे लिखा सिद्धार्थ एंड गरिमा ने एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया संदीप रेड्डी वांगा ने एंड स्टार कास्ट। अगर इस पर्टिकुलर गाने की बात करूँ तो रणबीर कपूर एंड रश्मिका मंदाना हमें इस गाने में नजर आए, लेकिन आप जो है कहीं और नजर आने की तैयारी अब शुरू कर लें।
1: मिर्ची अंशु।
0: अगर बस घर वाली ये शिकायत करेगी तुम जो हो घर पे नजर आते नहीं, आखिरकार जाते हो तो कहाँ ही जाते हो, तो बस मैं जो कह रही हूँ वो जवाब के तौर पे उन तक पहुँचा ही देना। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मी थी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, कई बार ये होता है ज़िंदगी में कि हमारे अंदर हुनर होता है, हमारे अंदर टैलेंट होता है, लेकिन हमारे पास वो राइट प्लेटफॉर्म नहीं होता जहाँ पर हम अपने अंदर छिपे हुए इस हुनर को दुनिया के सामने ला सकें। तो बस यही मौका इस वक्त अगर आपको कुछ दे रहा है, कोई दे रहा है, तो उसका नाम है कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन, यानी कि आपका अपना वॉइस ऑफ मिर्ची वन कतर, कतर्स गॉट टैलेंट के जरिए। अब देखिए ये मैग्नानिमस इवेंट, इसी इवेंट इसी महीने होने वाला है एंड सबसे खास बात ये, दिस इज एन ओपन अपॉर्चुनिटी टू एवरी इंडिविजुअल, एवरी ग्रुप परफॉर्मर, हूएवर इज विलिंग एंड कीन टू हाईलाइट द स्केल ऑफ देयर एबिलिटीज एंड प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन अराउंड। चाहे आप एक बहुत अच्छे डांसर हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, मैजिशियन हैं, या आपके अंदर जो भी हुनर है, जो भी खुला है, आप एक बार फिर से उसे दुनिया के सामने लाने की तैयारी शुरू कर लें। एंड अगर आपको लगता है कि आपको कतर गॉट टैलेंट में पार्टिसिपेट करना है, तो सबसे पहले ये बता दूं इसमें ना उम्र की कोई सीमा है, ना नेशनैलिटी का कोई बंधन है। फटाफट से आपको बस एक ही काम करना है, 30-60 seconds तक का एक वीडियो बनाना है दैट बेसिकली डिपिक्स योर आर्ट, दैट डिपिक्स योर टैलेंट, एंड हमें भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, व्हिच इज 5000-1896, 5000-1896, एंड यू आर ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर एंट्रीज बाय दिस सैटरडे। एंड अगर आप सेलेक्ट हुए तो आपको ऑडिशन राउंड में बुलाया जाएगा, एंड उसके बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो ग्रैंड फिनाले में आपकी एंट्री जरूर हो ही जाएगी और वो बड़ा सा मंच, वो मैग्नानिमस सब प्लेटफॉर्म करेगा आपका इंतजार, जहां आपका हुनर दुनिया के सामने पेश किया जाएगा एंड साथ में लॉटरी के तौर पर बहुत सारे गिफ्ट्स एंड प्राइजेस भी आपको दिए जाएंगे। चलिए, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मीनवाइल रूप कुमार राठौड़ की आवाज में आपको ये अगला गाना टाइटल ट्रैक रब ने बना दी जोड़ी का सुनाई दे। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
1: हाँ जी बोलिए।
2: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
1: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
3: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
1: कौन बोल रही है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
1: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
4: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
1: हेलो कौन बोल रहा है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
1: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
3: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
1: हेलो मैडम।
2: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
1: कौन बोल रहा
2: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
1: अभी कोई और बोल रही थी।
2: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
1: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
5: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: कौन बोल रहा है?
2: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
1: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
6: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
1: कौन बोल रहा है भैया?
2: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उसपे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
1: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है, नहीं भैया नहीं चाहिए मुझे।
4: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
2: हम सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या
1: कोई बोल रहा
2: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
7: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
8: थैंक यू
9: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
10: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
9: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
11: 89.6 FM, Mirchi 1, Mirchi 1. It's hot.

0: फहीम अब्दुल्ला की खूबसूरत सी आवाज़ और लवली ट्रैक इट इज द टाइटल ट्रैक ऑफ फिल्म सैयारा। हाय क्या खूबसूरत जोड़ी यार। अगहान पांडे की बात करूँ, अनीत पड्डा की बात करूँ, लेकिन अगर खूबसूरत की बात करूँ तो सबसे बड़ी खूबसूरती तो आपके और हमारे घर में
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. यार मुझे एक बात बताना कि क्या आपने कभी रियलाइज किया है, क्योंकि मैंने तो हमेशा किया है कि हम ना जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां कई बार नादानी में ही कर देते हैं। चल एक सवाल पूछती हूँ, कब आखिरी बार आपने अपनी मम्मी को बिना किसी वजह के कॉल किया हो? नहीं, ये सिर्फ पूछने के लिए कि आप ठीक तो। हम यहाँ पर रहकर अक्सर ये काम तो कर ही देते हैं, लेकिन जब मम्मी आपके पास, आपके करीब, आपके घर पर ही हो ना, तब डे टू डे लाइफ में कब उनसे ऐसा फोन करके पूछा कि मम्मी ठीक तो? मम्मी बोलेगी बेटा सुबह तो पास में ही थे ना, अचानक से क्या हुआ? नहीं मम्मा, जरूरी थोड़ी ना है ये जब करीब हो तभी आपको याद करें। माना कि थोड़ी दूरी है तभी तो आपकी याद आ ही जाती है ना। यार हम ना बड़े कमाल के लोग हैं, हम बाहर की दुनिया में ना बहुत गजब नजर आते हैं, चाहे बॉस कितना भी हमें डांटे ना, परेशान क्यों ना करे, वर्कलोड क्यों ना दे, लेकिन फिर भी हम उनके आगे काफ़ी पोलाइटली नजर आते हैं। अपने बाहर के रिश्तेदारों की बात करें, दोस्त यारों की बात करें, यार काफ़ी अच्छा इंप्रेशन उनके आगे क्रिएट करना है, बहुत अच्छे से रहते हैं हम। लेकिन जब बात घर की होती है ना, जितना जिंदगी का फ्रस्ट्रेशन है, जितनी जिंदगी की परेशानी है, सबसे पहले अगर कहीं जाकर निकलती हैं तो उन लोगों के सामने जो हमारी लाइफ में हमारे सबसे करीब हैं। फिर वो हमारा पार्टनर हो, हमारा स्पाउस हो, हमारे माँ बाप हो, हमारे सबसे सगे भाई बहन हो, क्योंकि पता होता है ना, चाहे जो भी हो, चाहे हम क्या भी कुछ भी क्यों ना कह दें, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें छोड़ के कभी ना जाएंगे, और ये होना भी चाहिए। लेकिन जब ये हो रहा है तो आपको क्या नहीं लगता कि जितनी सादगी हम बाहर की दुनिया में दिखाते या जताते हैं उतनी ना सही, लेकिन थोड़ी कम ही सही यार। लेकिन इन लोगों को हक से हर दिन हम ये भी ज़रूर महसूस कराएं कि हम इनसे कितना प्यार करते हैं यार। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट ना, ना सिर्फ बर्थडेज नहीं, सिर्फ एनिवर्सरीज नहीं, सिर्फ स्पेशल डेज नहीं, हर दिन लाइफ में एक रूटीन, एक रिचुअल होना चाहिए कि जो लोग हमारे लिए सबसे अहम है ना, हम उनके आगे अपनी फीलिंग्स ज़रूर एक्सप्रेस करें। क्योंकि क्या है ना, जिंदगी चाहे हमें किसी भी मोड़ या मुकाम में क्यों ना लेकर जाए, चंद लोगों की अगर मैं बात करूँ जो हर पल, हर वक्त, हर हाल में हमारे साथ रहेंगे, तो ये वही दो से तीन लोग रहेंगे। चलिए इस बात पर कुछ तो अर्ज किया है, रिश्ते आवाज़ों से नहीं एहसासों से जिंदा रहते हैं, इसलिए अपनों को मोहब्बत जताते रहना। दुनिया को जीतने में इतनी भी मसरूफ ना हो जाना कि घर लौटकर अपनों का ये दिल जीतना ही बस भूल जाना। चलिए जो भी सबसे करीब है, चाहे आपके पास ही क्यों ना है, आप भी फोन करो एंड बताओ हाउ मच दे मीन टू यू। केके की आवाज में बीते लम्हे, ये गाना मेरा सबसे फेवरेट, आप तक पहुंचाती हूँ। लम्हे बीते उसके पहले इजहार कर दो। Enjoy, बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
3: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं आप, यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। यू डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
2: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल्डा। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
6: बार बार।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
5: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: राइट, ये गाना कुछ ऐसा है कि आपको शेक होने में मजबूर कर ही दे।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to me, Thi Mirchi, and this is RJ Anshu with you. वैसे अगर शेक करने की बात करूँ तो कोई और करे ना करे, लेकिन इस वक्त इसमें इतनी जरूर पूरी कैपेसिटी है, पूरी ताकत है कि आपको 101% हिला के रख दे। यार मैं सच कह रही हूँ, जिसे लगता है ना कि उसे डांस वगैरह नहीं आता है, इस चिलचिलाती हुई गर्मी में बिना चप्पल की जमीन पे बस 5 मिनट खड़े होके देखो, मैं तो कहती हूँ मार्बल की फर्श में खड़े होके देखो, जो पूरी तरह से सन के एक्सपोजर में है, तुमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि तुम्हारे अंदर डांस का कीड़ा है और कितना कूट कूट के है। जो क्लासिकल कथक डांस सीखने में मैंने 6 साल लगाए ना, तुमको 2 मिनट भी ना लगेंगे। वेल, इस वक्त अगर गर्मी के हालचाल को हम देखने की कोशिश करें तो अपनी चरम परम सीमा में पहुंच चुकी है। टेम्परेचर जो है बढ़ चढ़कर एक ही बात कह रहा है कि भैया मैं जो है अपना असर खूब छोड़ूंगा, तुम जो है मेरे असर से खुद को बताना चाहते हो तो अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहो, खूब पानी पीना है, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा से ज्यादा लेना है, छाछ पीना है, वाटरमेलन जूस पीना है। टेम्परेचर का आंकड़ा 47 पार कर चुका है, मिनिमम है अराउंड 35। ध्यान रखिए, बाकी आपके कलेजे दिमाग के ठंडक के लिए तो हम हैं ही, टिक्के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, इट्स हॉट, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु। वेदर चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: हमारी काम वाली बाई बहुत ही इरेगुलर है, हर दूसरे दिन नहीं आती, क्या करूं?
1: वेल इट्स सो सिंपल यार, हर दूसरे दिन नहीं आती ना, तो उसको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही काम पे रखा कर। या इट्स जस्ट अमेजिंग, फैंटास्टिक, सिंपल।

Well, Vishal Mishra ki khoobsurat si awaaz and what a lovely track it is from the film Kabir Singh featuring Shahid Kapoor and Kiara Advani. Ye gaana to maine aapko suna diya, lekin zaruri ki baat kare to yaar kuch cheeze jo hai 101% hamari zindagi mein lazmi and behad zaruri hai. Mirchi Anshu. वेल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ है तुम्हारे और मेरे लिए इस वक्त तो वो है अपनी सेहत का ख्याल रखना. हाँ जी, अंशु है एक बार फिर से आपके साथ एंड रिमाइंड कराने आई है. जहाँ पे दुनिया में काम ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, रिश्तेदारी निभानी ज़रूरी है, वहीं उतना ही ज़रूरी है कि लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट असेट जो हमें सारे काम को, सारी चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट करने में बहुत बड़ी मेहनत करता है, यानी कि हमारी सेहत, हमारा हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसका ख्याल रखें. यार पता है क्या, मैंने ना लोगों को अक्सर सुना है एक बात के लिए कंप्लेन करते हुए कि मेरे नेल्स ब्रिटल हो रहे हैं, मेरे बाल जो हैं वो काफ़ी झड़ रहे हैं, या कहीं ना कहीं मुझे वीकनेस लगने लगी है. और हम सब बात में हम सोचते हैं कि सब्स्टिट्यूट्स अगर खा लेंगे, सप्लीमेंट्स खा लेंगे, तो कहीं ना कहीं हेल्थ जो है ना वो नॉर्मल हो जाएगी. हर कुछ दिन में लगता है कि जाके एक बार अपना जो मंथली चेकअप है या सिक्स मंथली चेकअप है हम वो जाके करा लें. वो सब बातें सही हैं, वो तो होती रहनी चाहिए, लेकिन जब तक मेन मुद्दा जो है आप अपनी डाइट में चेंज नहीं लाएंगे, तब तक चाहे आप कितने भी सप्लीमेंट्स क्यों ना खा लें, क्या कुछ कर लें, भाई लाइफस्टाइल चेंज के बगैर ना एक अच्छी सेहत अचीव हो ही नहीं सकती. एंड अगर डाइट एंड लाइफस्टाइल की बात करूँ तो उसमें नींद भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. सही तरह से सोना, कितने घंटे सोते हैं ये बात पर डिपेंड नहीं होती, डिपेंड ये करता है कि साउंड स्लीप आखिरकार आपको कितने घंटे की आई है. 6 घंटे भी साउंडली सो लिया ना भाई, बहुत है मैं कहती हूँ. आप खुद को कितनी अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रख रहे हो, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक. कितनी बार भूल जाते हो भाई पानी पीना, चाय पीना नहीं भूलोगे, लेकिन हाँ पानी पीना हम ज़रूर भूल जाएंगे. अगर आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ऑफिस वर्क है, लगातार बैठे रहना, 3-4 घंटे तक बैठे रहना, एब्सोल्युटली नो, बिग नो. एंड अगर डाइट की बात करें, बैलेंस टी, हर बार भूख लगने पर कॉफी या चाय जो है आपकी भूख को नहीं मिटा सकता, मिटा भी दे टेम्पटेशन को, लेकिन आपकी शरीर की जो जरूरत है ना उन्हें वो पूरा नहीं कर सकता. कार्ब्स भी उतनी ही जरूरी है जितना कि प्रोटीन है, हेल्दी फैट्स भी जरूरी हैं, मिनरल्स भी हैं. हर किसी का जब तक आपके डाइट में एक बैलेंस फॉर्मूला ना आए ना, तब तक ये नहीं होगा. देखो ये बातें ना हम बचपन से पढ़ते आए, लेकिन कई बार ज़रूरी होता है क्योंकि कोई आके आपको इसे रीट्रेट करे, एक बार फिर से याद दिलाए कि अगर अब तक ना किया तो ज़रूर करें. तो यार इन छोटी छोटी बातों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करो एंड उसके बाद देखो मेरी बातें सुनकर जो आपकी ज़िंदगी में खुशी होती है ना, ऑर्गेनिकली वो खुशियाँ आती रहेंगी. चलिए जी, ये बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन भाई एक सुपर पावर पैक ट्रैक है धूम 2 से जो इस वक्त मैं आपको सुनाना चाहती हूँ. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Milci. Iska bana, uska bana, saka bana. Ja bana. Burka, burka. Na vid bala burka.
1: Milci burka. Hello.
2: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
3: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
3: हाँ जी,
1: हाँ बोलिए।
3: 33501।
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
4: हाय।
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए।
3: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
5: ये बेल जा रही है।
3: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई तू एक बात सुन, ये
3: आपके पास
1: है?
3: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501।
1: हेलो,
3: हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
1: किससे पूछे जा रहे हैं?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
1: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
3: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना आता है।
3: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
5: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
1: किसने दिया मेरा नंबर?
5: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
1: अरे मैं कुकड़ू को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
8: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
10: 89.6
11: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज. ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन मैंने भी कुछ सुना है वो आप तक पहुंचा दूं. मिर्ची अंशु. अरे बस मैंने ये सुना है कि आपकी जिंदगी में अच्छे वाले दिन जो है एक बार फिर से आ ही चुके हैं. यार मेरी जिंदगी के अच्छे दिन तो काफी हद तक इस बात पे डिपेंड करते हैं कि लाइफ की छोटी खुशियां मुझे कितनी बड़ी खुशियां दे जा रही है. छोटी खुशियां लेकिन बड़ा ताल्लुक, बताते हैं ना. भाई साहब जब अच्छे एक्सचेंज रेट का बोलबाला हो ना तो ये बात छोटी नहीं होती. भले ही छोटा सा इंक्रीमेंट हो लेकिन ज़िंदगी में खुशियां जो है आपकी और हमारी बड़ा ही दर्ज आता है. देखिए आप और हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम घर से दूर किसी और घर में होते हैं, सबसे प्राइम रीज़न अगर अपने करियर को संवारना होता है, अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना होता है, तो उस वक्त अगर ये बात पता हो कि भैया जितने भी पैसे हमने बचत किए हैं उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हो रहा है तो खुशियां जो है वो दुगनी हो जाती हैं. तो चलिए ज़रा देखते हैं कि आज आईपी मनी हमारी ज़िंदगी में इस खुशियों के इंक्रीमेंट में क्या नई लहर लेकर आया है. वैसे अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो वन रियल के अगेंस्ट आपको मिलने वाले हैं इंडियन रुपीज 26.08. काजू की कतली खाने की बारी जो है वो आ ही चुकी है. इसके साथ ही अगर पाकिस्तानी रुपीज की मैं बात करूं, सूरज 76.52. भैया छुट्टी पे जा रहे हो, हलवा लेकर आओगे और जरूर आओगे, ये बात तो तय है. लेकिन अगर नेपाल से आप बिलोंग करते हैं, क्या ही बात है यार, आपके तो 41.70 आपको मिलने वाले हैं. आप भी अपनी अच्छी वाली मिठाई जो है मेरे लिए लेकर आना, जरूर लेकर आना. लेकिन हाँ, अगर बांग्लादेश से आप हैं तो आप जानते हैं कि मुझे मिस्टी दोई जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है, 33.93. लंगन रुपीस का आज क्या ही डंका मचा हुआ है, जरा देखते हैं. 1 कतरी रियाल के अगेंस्ट आपको आज मिलने वाले हैं लंगन रुपीस 91.78. तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां. लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स हॉट, एंजॉय. करेंसी एक्सचेंज रेट इज ब्रॉट टू यू

0: चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
1: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
0: हाँ, पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
1: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
3: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
4: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
5: बहुत कुछ होगा।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: और इज़ सिंह की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। भाई साहब सच कह रही हूँ, कुछ गाने जो होते हैं ना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी रूह को कैसे झंझोरा जाए। एंड आशिकी 2 से ये गाना शायद हमारी जिंदगी में ये काम जरूर करता है।
1: मिर्ची अंशु
0: यार सच कह रही हूँ, मतलब कुछ बातों को ना आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते। एंड सच कह रही हूँ, इग्नोर ना करने में ही आपकी भलाई है। देखो जब जब बात होती है अच्छे खाने पीने की, दिल जो है कितना भी बोले कि नहीं भैया जरा कंट्रोल कर ले, जरा रुक ले, कोई खुद को रोके तो कैसे ही रोके। नहीं, मेरी लाइफ का फंडा तो बड़ा सिंपल है कि भले मैं 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल लूंगी, दौड़ लूंगी, लेकिन ना खाने पीने में मैं कोई कोताही नहीं करूंगी। तो क्या एक बात बताओ, आपके दिमाग में भी ऐसा कभी कुछ ख्याल आता है, अरे ठीक है यार खा लेते हैं, बाद में थोड़ा एक्स्ट्रा चल लेंगे। क्या आपके ख्याल मेरे ख्याल से ऐसे कुछ मिलते हैं? अगर ऐसा कुछ है एंड अगर आपको लगता है कि समर्स आते ही आपके दिल में भी एक खास ख्याल आता है कि आम खा लिया जाए, तो बस अगला पैगाम, अगला मैसेज जो है ये आपके लिए। भाई साहब वो दिन हमारी जिंदगी में फिर से एक बार आ ही गया है जब आम की खास वाली बहार हमारी लाइफ में आने वाली है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल व्हिच इज किक स्टार्टिंग टुमारो एट सूख वाकिफ ईस्टर्न स्क्वायर। एक बार फिर से वो एसी के टेंट के नीचे कुल मिलाकर पाकिस्तानी आम की बहार लगने वाली है। ना ही सिर्फ आम की पेटियां मिलेंगी बल्कि कच्चे आम के अचार की बात करूं, आम से बने हुए ढेर सारे डेलिकेसीज की बात करूं, ये सारा का सारा नजारा ना ही आप सब फिटनेस करोगे बल्कि उसे टेस्ट के साथ महसूस भी करोगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मैंने तो डिसाइड किया है कल के कल मुझे धावा बोलना है, मतलब कल के कल मुझे पहुंचना है पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल ईस्टर्न स्क्वायर सूख वाकिफ। व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द डे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर गर्मी के दिनों में आम की बनी हुई डेलिकेसीज की मैं बात करूं तो आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? मैं अपना बता दूं अगर किस्सा, तो मुझे आमरस और रोटी, आम के रस के साथ रोटी बेहद पसंद है। एंड सेकेंड चीज़ जो मुझे आम की बहुत ज़्यादा पसंद है, ये कच्चे आम से बनता है आम का पन्ना। इट इज़ अ ड्रिंक, इट इज़ सुपर हाइड्रेटिंग, सुपर रिफ्रेशिंग एंड इसके साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इसमें कूट कूट कर भरे होते हैं। इन दोनों में से अगर आपका कोई फेवरेट है तो मुझे बताना ज़रूर। 5000 1896 वी विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम @mirchi1kataria मिर्ची अंशु। और इसके अलावा कोई दूसरा फेवरेट है तो वो भी तुम बता ही देना, अरे तुम्हारी डिश ज़रा ट्राई हम कर ही लेंगे। परंपरा टंडन की आवाज, फिल्म का नाम दो पत्ती, यानी अगला गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: मिलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
3: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, I work very hard, so I need that fitness level.
2: And I need your motivation level, Milind Soman. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Our business is our business. None of your business.
5: Par didi, our entertainment is your entertainment. Entertainment.
6: Qatar ka number one radio station.
7: 89.6
8: 89.6 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.

0: वह सुखविंदर सिंह भूमि त्रिवेदी की पावर पैक आवाज, फिल्म का नाम रईस एंड रईसी से भरा ये गाना। चलिए तो सुना दिया, लेकिन उड़ने की बारी तो अब मेरी आ चुकी है।
1: मिर्ची अंशु
0: यार, मैं सच कह रही हूँ, कभी कभी ना जब मैं बहुत ज्यादा कहीं पहुंचने के लिए लेट हो रही होती हूँ, मेरे दिल में बस एक ही ख्याल होता है कि काश मैं बस यहाँ उड़ के पहुंच जाऊँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि हर एक सिग्नल जो है मुझे हर बार ग्रीन ग्रीन मिले? मतलब दिल की ऐसी ख्वाहिश होती है ना कि जब भी मैं देरी हो रही हूँ, रास्ता मिले कुछ इस तरह का साफ या सफेद हो, क्या तो मुझे उड़ने का ही मौका मिल जाए, नहीं तो फिर वो Formula 1 की रेस जो है मेरी गाड़ी यहीं पर लगा ले। भाई क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आप जब कभी लेट हो रहे हैं तब इंटेंशनली ऐसा होता है कि सारे के सारे सिग्नल्स जो है आपको रेड पे रेड मिले? नहीं, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। और हाँ, जब मेरे पास सुकून का इत्मीनान से ढेर सारा वक्त है ना, तब मुझे सारे सिग्नल्स ग्रीन मिलेंगे। जब मैं चाहे दिल से कितनी भी तमन्ना ना कर लूं कि आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं, तुम लाल हो पीले हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, ये सिग्नल का कोई तो रिश्ता है जो मेरे साथ बड़ा ही अनोखा है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है क्या? वैसे उड़ने से याद आया मुझे, हमने ना वो उड़ने वाली टैक्सी के बारे में सुना था, याद है आपको, वो रोबो टैक्सी? क्या आपने ट्राई की क्या? बीच में जब वो ट्रायल का फेज आया था, मैं ईगरली वेट कर रही हूँ कि वो दिन कब आएगा जब मुझे लेने के लिए सीधा ये उड़ने वाली टैक्सी आएगी, तब मैं आराम से इत्मीनान से बातें कह पाऊंगी। आजकल जो मेरे पाँव हैं वो जमीन पे टिकते नहीं, घर वाले तो वैसे भी टिकने देखते नहीं, और बाहर जब हम लेट होते हैं तो काश ऐसा कुछ आलम हो कि हम कह सकें कि हम जो है हर वक्त उड़ान ही भरते रहते हैं। चलिए जी, अब मेरी उड़ान भरने की बारी आ चुकी है, एंड भर के अगर मैं कहीं पहुंचने वाली हूं तो वो है मेरी खाने की प्लेट। वैसे आज मैंने खाने पे घर पे बनाया हुआ पनीर की सब्जी, चपाती, साथ में दाल एंड सैलड। What is your status? आज आपके लंच का क्या सीन है? क्या खाने वाले हो? घर से टिफिन का डब्बा लाए और रेस्टोरेंट जाओगे या ऑफिस का मेस? 5000 1896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम Mirchi1 कतरिया मिर्ची अंशु। जाने से पहले मेरा दिल जो आप पे अटका हुआ है, तो अरिजीत सिंह एंड रूपाली मोघी की आवाज़ में गाना तो सुनाते हुए जाऊँगी। बाकी मिलते रहेंगे जी कल स्टूडियो मिर्ची। बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए।
1: बूढ़ी बाबा, मेरे पति को मेरे हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती, क्या करूँ?
0: तो सिंपल है ना, तुम्हारे हाथ की रोटी मत खिलाओ, आंटी की खिला दो।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस।

0: रुपए में पैकेट भर के चिप्स खाना याद है आपको?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. और हुआ यूं कि कॉन्वर्सेशन से 2 रुपए का वो चिप्स का पैकेट याद आ गया जो ये जो 5, 5, 10, 10, 20, 20 रुपए के हवा वाले चिप्स वाले पैकेट्स जो हैं उनके लॉन्च से पहले मार्केट में आया करता था, जिसे हम वेफर्स कहा करते थे। सिंपल तौर तरीके से कि यार आलू है, फ्राइड आलू, और उस पर नमक लगा हुआ है, और वाह क्या स्वाद हुआ करता था यार उसका। इनफैक्ट स्वाद क्या, उसकी तो क्वांटिटी भी बड़ी जबरदस्त हुआ करती थी। एंड देन आई रियलाइज्ड, मैंने कहा यार ये एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में हम कैसे इधर से उधर हो गए, नहीं वक्त नहीं लगा हमें पलटी खाते हुए। अब पता है ये वही चिप्स हैं जो कि कभी कहीं बर्थडे पार्टी में मिल जाया करते थे ना, तो मैं केक के साथ वेफर्स को कॉम्बिनेशन बनाकर और फिर खाया करती थी। हमेशा से ही मेरा ये मामला सेट रहा है, और ये मेरी बचपन की आदत है यार, केक और वेफर से लेकर आज तक। अगर मामला बहुत मीठा हो जाता है ना तो कुछ नमकीन तो चाहिए ही होता है। लेकिन अभी यादों को मीठा नमकीन करने की बारी आ चुकी है। मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए मैं आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La vizba la murga. Mirci, murga.
1: Hello.
2: Hello, Tejinder ji.
1: हाँ जी,
2: हाँ जी तेजेंद्र जी, मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस से। आपने अप्लाई कर रखा था पासपोर्ट?
1: जी, हाँ जी किया था।
2: हाँ, ये तेजेंद्र जी आपका थोड़ा लेट मिलेगा पासपोर्ट, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था मैंने।
1: कितना लेट मिलेगा
2: आपको इसमें? एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे इनका तेजेंद्र का पासपोर्ट कब मिल रहा है? तत्काल में, आपने तत्काल में बनवाया ना इमरजेंसी में?
1: हाँ जी,
2: एक सेकंड। हाँ इमरजेंसी का है सर, 3.5 महीने बाद मिलेगा आपको पासपोर्ट।
1: 3.5 महीने बाद?
2: हाँ जी
1: भाई साहब, तत्काल का क्या मतलब होता है? 5 दिन में मिलता है तत्काल का? तो
2: सर वो मुझे ही मालूम है, मेरे को क्यों समझा रहे हैं। असल में तेजेंद्र जी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। आपके आसपास कोई है तो नहीं?
1: नहीं कोई नहीं है।
2: हम ये कह रहा था, हमारा एक बंदा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है, ठीक है?
1: अच्छा।
2: बिल्कुल वो डिक्टो कॉपी लगता है आपका, जीरोक्स लगता है। अच्छा, उसको निकलना है दुबई। वो वैसे तो निकल नहीं सकता अपने पासपोर्ट से क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। तो हम कुछ दिन के लिए आपके पासपोर्ट पे से आपका फोटो हटा के, ना आपकी दाढ़ी होती तो चल जाता, उसका फोटो चिपका के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। वो 3-4 आदमियों को ठिकाने लगा के वापस आ जाएगा, तो उसमें 3-4 महीने लगेंगे।
1: क्या बोल रहा है भाई, कौन? हेलो।
2: तो मैं उसको बोल देता हूँ, वो वहाँ पे वो आपके घर पहुँचवा देगा। आप बल्कि वो बंदा ही
1: बात सुन। हेलो।
2: हाँ बोलिए बोलिए।
1: क्या बोल रहा है भाई,
2: आपके पासपोर्ट पे उसका फोटो लगा के आपके नाम से वो दुबई जाएगा, 2-3 को ठिकाने लगाना, वापस आ जाएगा, उसका जरूरी काम है।
1: मैं बोल रहा हूँ,
2: मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ।
1: क्या बोल रहा है, क्या
2: आप इतना भड़क क्यों रहे हो? काम आप थोड़ी करने जा रहे हो, काम तो वो लगाने जा रहे हैं ठिकाने।
1: नहीं, बात क्या कर रहा है, पासपोर्ट पे किसी और को भेज रहा है
2: यार। आप मेरी
1: तेजेंद्र जी, नहीं
2: सोचो वो कितना भड़क रहा होगा, 3 आदमियों को उसको टपका के आना है दुबई में, उसकी भी तो भड़कन सोचो ना। अरे तो यार आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा 1.5 महीने के लिए। आपका नाम यूज कर रहा है, आपका नाम यूज करने में क्या आपकी गाड़ी मांग रहा है क्या? गाड़ी यूज कर रहा है वो,
1: नाम बता पहले। कौन रहा है
2: ये लकी डॉ निकल रहे हैं, वरना किसी और तेजेंद्र को भेज देते। आपका मौका लगा आप ऐसे भड़क रहे हो उल्टा। मेरी बात सुनिए तेजेंद्र, तेजेंद्र मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ और तुम रेडियो मिर्ची पे हो। मुझे शालिनी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुमने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तुम्हारा मुर्गा बनाया भाई, तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें दुबई भेज दूँ, उसे नहीं भेजूँ।
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: अर्ज किया है
5: इरशाद, इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Ja Simran, ja jeere apni zindagi. Ja beta, ja.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट। नशा

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बागबान की सक्सेस के बाद द ट्रियो ऑफ अमित जी, हेमा जी एंड सलमान खान वॉज अगेन सीन इन द फिल्म बाबुल.
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And you know what? बाबुल बनाने से पहले रवि चोपड़ा के दिमाग में था कि वो अमित जी और सलमान खान को लेकर एक पीरियड ड्रामा बनाएंगे, प्री इंडिपेंडेंस एरा ऑफ इंडिया पर बेस्ड. बट इवेंचुअली उन्होंने बनाई बाबुल, विच आई थिंक वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल टॉपिक जो उन्होंने छुआ था. क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ उन्होंने अपनी मूवी में ही नहीं छुआ, इस टॉपिक ने काफी सारे दिलों को भी छुआ. द स्टोरी ऑफ अ डॉटर इन लॉ एंड अ फादर इन लॉ, जहाँ पे फादर इन लॉ गेट्स हर डॉटर इन लॉ मैरिड. एंड खैर, हम तो छोटे थे उस टाइम पर, हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि एज अ सोसाइटी हमने कितने चेंजेस देखे. लेकिन हाँ, एक बात तो है कि हमारी जो हिंदी फिल्में है ना, वो हमारी सोसाइटी का आईना जरूर होती है, और कहीं ना कहीं ये एक चेंज जरूर लेकर आती है. एंड उस टाइम पर ऐसे टॉपिक का छिड़ना वॉज अ बिग डील फॉर श्योर. एंड आई एम सो ग्लैड कि रवि चोपड़ा ने प्री इंडिपेंडेंस एरा ऑफ इंडिया को ना लेकर इंडिपेंडेंट और मॉडर्न इंडिया के माइंड सेट को चेंज करने का थॉट लिया. बट पता है क्या, उनका पहला थॉट रानी मुखर्जी नहीं थी इस फिल्म के लिए. सबसे पहले तो बी आर चोपड़ा चाहते थे कि सुष्मिता ये फिल्म करें, लेकिन सुष्मिता के पास डेट नहीं थी, तो फिर ये फिल्म काजोल के पास गई, फिर तबू के पास गई, एंड देन इवेंचुअली रानी मुखर्जी के पास गई. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, इस फिल्म का जो वार्डरोब है वो मनीष मल्होत्रा ने नहीं किया. अब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का 36 का आंकड़ा था. द ओनली रीजन वॉज कि मनीष मल्होत्रा ऑलरेडी रानी के लिए कभी अलविदा ना कहना की वार्डरोब कर चुके थे, और उन्हें अपने वार्डरोब में कुछ नयापन चाहिए था, जिसकी वजह से शी आस्क्ड द मेकर्स टू रोप इन सब्यसाची मुखर्जी. एंड आई रियली लाइक्ड रानी मुखर्जी की साड़ी वाला वो लुक, जिसमें कि उन्होंने फुल स्लीव्स की ब्लाउजेस का ट्रेंड शुरू किया था यार. कमिंग अप मोर ऑन दिस फिल्म, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची इट्स हॉट। अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
5: अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स, गोल्डन समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
6: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है।
7: और हम जहाँ चल जाते हैं, बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

गया, डरने लगे लोग, ऐसा तूफान बन गया। और क्या कहूं मैं, सारा जहां का उसके कदमों में

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब बाबुल शूट हो रही थी ना, at that time सलमान खान और जॉन इब्राहिम के बीच में दंगल चल रहा था.
0: Mirchi. Chat room.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And हुआ यूं कि इन दोनों का कोई इंटरनेशनल डांस टूर चल रहा था, जहां पर सलमान खान और जॉन इब्राहिम के बीच में कुछ तो भी बात हुई और डिफरेंसेस क्रिएट हुए. अब यही डिफरेंसेस सेट पर भी आ गए जब ये फिल्म शूट होनी थी, जिसकी वजह से इस फिल्म की जो स्केड्यूल है वो काफी सारे डिलेज देख चुका था. बट थैंक गॉड इवेंचुअली ये फिल्म का रैप अप हुआ, फिल्म पूरी बनी और रिलीज भी हो गई. बट वेरी इंटरेस्टिंगली आई शुड ऑल्सो लेट यू नो कि हेमा मालिनी भी बाबुल नाम की एक फिल्म को डायरेक्ट करना चाह रही थी, वेर इन शी वॉन्टेड टू रोप इन रेखा, ईशा देओल एंड अभिषेक बच्चन. और इस फिल्म में वो मदर एंड डॉटर का रिलेशनशिप बताना चाह रही थी. और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि ये फिल्म वॉज बेस्ड ऑन क्लासिकल म्यूजिक. अब मैं ये सोच रही हूँ कि जो बाबुल रवि चोपड़ा ने बनाई वो ज्यादा अच्छी थी, या फिर हेमा जी का ये जो आइडिया था जो कभी आगे नहीं बढ़ पाया वो ज्यादा अच्छा होता. वेल, अगर फिल्म रिलीज होती तो ही हमें पता लगता. बट आई स्वेयर हाँ, आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा. स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
0: मिडडे मोहब्बत प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज. फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
3: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
2: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
3: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
2: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
3: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं, इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
2: फिटनेस का पता नहीं, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
5: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
4: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो। भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
7: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मेरे घर के पास बहुत कबूतर है, परेशानी होती है यार, क्या करूं?
1: तुम्हें जब पता है कि इतने सारे कबूतर हैं, तो घोंसले के बाजू में घर मत बना, समझा?

0: Midday Mohabbat
1: presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.
2: Sara zamana sara ka deewana.
3: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
4: अपने टाइम से निकलता हुआ चांद भले ही हम मिस कर दिया करते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब हम देश में निकला होगा चांद टीवी पर जरूर देखा करते थे।
3: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
4: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और NRIs की लाइव्स पर मूवीज तो काफी बनी, लेकिन सीरियल बना देश में निकला होगा चांद, पम्मी और देव की लव स्टोरी। आए हाय, वरुण बदोला की तो मैं वैसे ही फैन थी आफ्टर अस्तित्व, और जब उन्हें देव के रूप में देखा ना, तो मेरे निक्कू से दिल ने भी फैन गर्ल से आई हैव अ क्रश ऑन हिम बोलना शुरू कर दिया था। और संगीता घोष, आई जस्ट लव्ड हर वार्डरोब यार, उनका वार्डरोब रिमाइंडेड मी ऑफ चांदनी की श्रीदेवी। स्टोरी भी बड़ी प्यारी सी थी यार, पम्मी एक प्यारी सी लड़की जो कि विदेश में रहती थी लेकिन अपने देश को दिल में लिए घूमती थी। अपनी कजन की शादी में आई हुई पम्मी चंडीगढ़ में मिलती है एक लड़के से जिसका नाम था देव, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट था कि पम्मी की तो ऑलरेडी एक अच्छे खासे डॉक्टर से मंगनी हो चुकी है जो कि लंदन में ही रहता है, नाम है उसका रोहन। रोहन बुरा लड़का नहीं है, लेकिन क्या है कि पम्मी और देव की आंखें मिल चुकी हैं, और जब ये नजरें मिली है ना, आंखें हुई 2 से 4 और दिल हुए 2 से 1। बस यही एक वो चीज थी जिसने कि हमें टीवी से चिपका दिया था कि क्या देव और पम्मी की शादी होगी। लेकिन यार वो जो शादी वाला सीक्वेंस था ना, जहाँ पम्मी और देव की नजरें मिली थी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। एंड देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब मैट्रिमोनियल साइट्स का काम शादियां ही किया करती थी कि जी फलानी ढिमा की शादी में मिले, नजरें मिली और फिर कुंडलियां भी मिल गई, काम खत्म, आई मीन लाइफ सेट। एंड दैट वाज वन रीजन कि ये सीक्वेंस वाज एक्साइटिंग फॉर द इंडियन ऑडियंस एज वेल। आज के टाइम पर शादी टू अस इज मोर अबाउट लहंगाज एंड खाना पीना एंड नाचना गाना। हम इस बात पे ध्यान नहीं देते कि यार वहाँ पे गुड लुकिंग लड़के होंगे कि नहीं होंगे, मतलब कभी कभी दे भी देते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन एक टाइम था कि शादियों में ही अच्छे लड़के मिला करते थे, इनफैक्ट अच्छी लड़कियां भी मिला करती थी। मैं तो लड़कियों की POV से बोल रही हूँ। एनीवेज, कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक विद दिस, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mitch.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mitch, burga.
3: हेलो
4: हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं सेल्यूलर से बोल रहा हूँ। सर हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊँ। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
3: अच्छा,
4: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
3: के पास है क्या ये सर्विस?
4: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर, जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा, सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
3: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस
4: सर? आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
3: ठीक है,
4: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
3: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
4: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया, अब आपके बॉस ये सुनेंगे, सुनिए।
3: ये क्या है भैया?
4: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
3: तुम्हें मशीन मशीन चलाने आती भी है?
4: सर मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देखे देखिए।
3: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
4: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
3: मजाक कर रहे तू मेरे से?
4: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, सर सर सर सर सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर आप। हेलो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गाली नहीं सुन सकता सर, मैं
5: रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गाली मत दीजिए यार।
4: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया डब हो गए।
6: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
8: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
9: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
10: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat
1: presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.
2: बस इतना सा ख्वाब है फिल्म का ये गाना मुझे ना बड़ा प्यारा सा लगता है यार. कितना क्यूट सा गाना है यार, जहाँ पर एक छोटी सी रानी मुखर्जी और एक लंबे से अभिषेक बच्चन हंसते गाते मुस्कुराते चारों तरफ हरियाली उनके और हरियाली के बीच में इस गाने को गुनगुनाते हुए नाचते हुए इस गाने में दिखाई दे रहे हैं. और बात भी कितनी सिंपल है यार कि कुछ ऐसा जहाँ हम बनाए, जहाँ पहला हो हर वो नज़ारा, पहला सावन का बादल, पहला लहराता आंचल, पहला भवरा वो पागल, जहाँ पहला प्यार हो. ओए होए होए होए, इस गाने को सुन करना ऐसा ही लगता है कि यार लाइफ कितनी सिंपल है. नहीं
3: सारा जमाना सारा का दीवाना.
4: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
2: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And well, 90s से related काफी सारी यादें और बातें हमें simple लगती हैं, लेकिन एक चीज है जो कि 90s से related है और उसे complicate करने में मुझे बड़ा मजा आता है, which is मान ना मान करो गानों की पहचान. और यहाँ आज फिर मैंने दो गानों को आपस में मिला दिया है, उनको ट्विंस बना दिया है, ताकि आप थोड़ी सी जद्दोजहद करके इन्हें पहचान पाओ कि ये दो गाने असल में है कौन से. And here we go.

बस अब तो सिंपल है यार लाइफ। अब आपको डीएम करना है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, अपना नाम, अपने शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम लिखकर मुझे फटाक से भेज दो। एंड स्टे ट्यून्ड रहो विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा, मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

से देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: 90s और अर्ली 2000 में ये आदत सी बन गई थी कि अगर किसी मूवी की जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही बेसिक प्लेन जेन और सिंपल है तो यार उसमें एक तड़कता भड़कता गाना तो होना ही चाहिए. और ऐसा ही कुछ सिर्फ तुम के मामले में भी हुआ था.
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान.
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा. सिर्फ तुम में दिलबर ऐसा गाना बना था कि उसका तो रीमेक वापस से अभी रिसेंटली बना है जो एक्चुअली किसी को ज्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है लेकिन ये ओरिजिनल भी ओरिजिनल नहीं था. एक्चुअली क्या है ना कि ये जो गाना था दिस वॉज इंस्पायर्ड बाय अ पाकिस्तानी गाना जो कि आधा पंजाबी में था और आधा हिंदी में था. गाना कुछ यू है.

0: रिंग्स अ बेल।
1: हालांकि इस गाने की हकीकत जानने के बाद दिल तो मेरा भी थोड़ा सा टूटा ये सोचकर कि यार ये गाना ओरिजिनल नहीं है, लेकिन फिर मैंने अपने दिल को तसल्ली दे दी कि सिर्फ तो मूवी बेचारी बिल्कुल ही फ्लॉप सी थी, और अगर उस फिल्म को किसी ने इस दुनिया में याद रखा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस गाने के बेसिस पे है। तो चलो जी, जाने दिया इस बात को भी, और अभी आने दिया अगले गाने को। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ ना तो नींद आ जाती है।
2: क्यों नहीं हो रही पढ़ाई?
0: क्या करूँ?
1: अरे घोचू, तो लेटे लेटे पढ़ना, अच्छे से सो भी पाएगा रे तू।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
4: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं तीन।
5: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Basta, what is that?
2: नब्बे की गप्पे।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। Well, there used to be a time जब vocabulary भी छोटी होती थी और type of bags की choice भी। क्या आपने कभी बैग को बस्ता बोला है? देखो यार, हमें तो कॉन्वेंट स्कूल में एडमिट करवाया गया था तो आई कुडंट यूज दिस वर्ड, लेकिन मेरे घर के काफी सारे बड़े यूज टू यूज दिस वर्ड। इनफैक्ट हमारे ऑटो वाले जो भैया थे वो भी बैग को बस्ता ही कहा करते थे, और मेरी ट्यूशन टीचर वो भी हमारे बैग को बस्ता कहा करती थी कि बेटा बस्ता ले लिया, बेटा बस्ते में अपनी बुक्स और पेंसिल्स रख ली। लेकिन ये जो बस्ता था ना, ये बस्ता ही लगता था यार, अ रेक्टेंगुलर शेप बैग जिसके दो बकल्स होते थे या वो मेटल वाले बटन, सबसे बाहर दो पॉकेट्स होती थी, देन अंदर किताबें रखने की जगह, एंड दैट्स इट। नो टू मेनी जिप्स एंड पॉकेट्स टू कंफ्यूज अस, जिससे कि हम कभी अपने रबर और पेंसिल ढूंढते ढूंढते पगलाए नहीं, अंटिल वी हैड अ रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग्स टू चूज फ्रॉम, अ स्लिंग बैग, अ टोट बैग, अ शोल्डर बैग एंड व्हाट नॉट। एंड यू नो व्हाट, इन सब में हम लड़कियों को काफी मेहनत के बाद एक रबर बैंड या एक छोटी सी लिपस्टिक मिल पाती है। Doesn't matter how big or small the bag is, लेकिन सामान ढूंढना हमेशा ही मुश्किल होता है। लेकिन आपको पता है, ये जो बस्ता था ना, ये लड़के का हो या लड़की का हो, एक चीज इनमें कॉमन जरूर हुआ करती थी, और वो थी टिफिन से बहते हुए सब्जी और अचार के तेल के दाग, जिसकी स्मेल मैं आज भी बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La
1: virpa la burka. Mirchi, burka. Hello.
2: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
1: हाँ जी बोलिए।
2: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
1: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
3: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
1: कौन बोल रही है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
1: क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
4: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
1: हेलो कौन बोल रहा है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
1: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
3: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
1: हेलो मैडम।
2: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
1: कौन बोल रहा
2: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
1: अभी कोई और बोल रही थी?
2: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
1: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है इसमें, कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
5: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: कौन बोल रहा है?
2: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
1: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
6: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
1: कौन बोल रहा है भैया?
2: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
1: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है, नहीं भैया नहीं नहीं चाहिए मुझे।
7: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
2: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
8: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
9: थैंक यू
10: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
11: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear तकियों की दीवारों से बने घर,
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज पता है, खुद का घर बनाने की एक अलग ही जंग लड़ रहा है जमाना। वो जमाना जो कभी तुम से एक घर बनाकर खुश था। तुम्हारी दीवारें ईंट पत्थर की और खून पसीने की नहीं थी, पर सुकून और वार्मथ की जरूर थी। उनमें लाइट नहीं थी, लेकिन वो हमारी मुस्कान से जगमगाता था। साउंड सिस्टम नहीं था, लेकिन हमारी हंसी से खिलखिलाता था। हमारी इमेजिनेशन कितनी गजब थी यार, कि तुम्हें बनाकर हम सोचा करते थे कि हमने फेरी टेल से निकला कोई बड़ा सा कासल बना दिया। और आज इंटीरियर डिजाइनिंग की मैगजीन से इंस्पायर्ड घर भी सेट कर देना तो भी तसल्ली नहीं होती कि नहीं नहीं नहीं यार, परफेक्ट नहीं है। अच्छा है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। कितने संतुष्ट थे ना हम, तुम्हें बनाते, कहानियां बनाते और खुश रहते। यू नो, तकियों की दीवारों वाले घर, तुमने हमें एक बात नहीं बताई, और अगर बोल पाते ना तो जरूर बताते कि घर परफेक्ट नहीं, थोड़ा तहस नहस ही अच्छा लगता है। घर वही घर लगता है जहाँ थोड़ी कमी हो, तभी तो थोड़ा है थोड़े की जरूरत है बिकम्स अ परफेक्ट फैमिली सॉन्ग। नहीं क्या, तुम्हारी यादों में सुकून पाती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Midday Mohabbat presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
1: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
2: आएंगे दीदी।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
2: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिड्डे मोहब्बत
1: प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज फ्रॉम सेवरी टू स्वीट एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज
2: सारा ज़माना सारा का दीवाना
3: मिड्डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: प्रसून जोशी ने जो लिख दिया सो लिख दिया नरेश अय्यर ने जो गा दिया सो गा दिया और रहमान सर ने जो म्यूजिक बना दिया सो बना दिया और यूं आया कैसेट के साइड बी का चौथा गाना
3: मिर्ची 90s कैसेट।
4: इस गाने ने सिर्फ फिल्म ही नहीं हम में भी एज यंग भारत जान डाल दी थी। इस गाने को सुनकर ना आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं एंड आई फील कि जब कभी आपको ये लगे ना कि आप सिचुएशन से हार रहे हो एंड इट्स टाइम टू गिव अप इस गाने को सुनना असर होगा क्योंकि इस गाने की ये लाइंस बड़ी इन्फ्लुएंशियल लगती है मुझे।

एंड यस, जब तक अपने अंदर के अंधेरे में झांक कर ये नहीं बोलेंगे ना, तो रोशनी कहाँ से आएगी। जब ये गाना हम मिलेनियल किड्स को तब जोश से भर सकता था जब हम अपनी जिंदगी की शुरुआत ही कर रहे थे, तो आज क्यों नहीं। बदला कुछ नहीं है बॉस, बस अब हमें खुद को मुझसे नहीं होगा बोलने की आदत हो गई है। लेकिन ये भी जान लो, ऐसी आदतों से जितनी जल्दी निजात पाएंगे ना, उतना ही जल्दी आगे जा पाएंगे। एंड नाउ विद दिस इट्स टाइम फॉर मी टू से कि हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। यहाँ के अलावा आप मुझे ढूंढ सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: John Abraham, आपके हिसाब से the top fit boys of the Hindi film industry.
3: First reference is always going to be Varun Dhawan and I'll tell you why. क्योंकि वरुण का जो physique है वो बहुत ही proportionate है. उसके legs बहुत ही strong है. Tiger Shroff, fantastic body. Ranveer Singh, extremely, extremely fit. And of course, Hrithik Roshan. Honestly, amongst all these, including myself, I think सबसे fittest इंसान हमारे industry में is Akshay Kumar. And I mean holistically fit. He can survive anywhere. अगर आप उसको Mount Everest पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार will be the only guy who will survive and come out.
2: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम. अक्षय कुमार is the only person in the Hindi film industry जो by choice इन जगहों पर जाएंगे. आप सुन रहे हैं मिर्ची, It's hot.
0: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
1: Only on Mirchi, It's hot.
4: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
5: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, अपना सवाल क्या है वो बता बच्चू।
0: अरे भाई क्या बोलूँ आपको, इधर घर ढूंढना इतना टफ है, इतना टफ है, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा, क्या करूँ।
1: अबे सबसे पहले तो ये बता कि तू किसका घर ढूंढ रहा है, तभी तो हेल्प कर पाऊंगा ना।
2: मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं।

0: इस गाने को आवाज दी है गुरु रंधावा ने। म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय गुरु रंधावा, गिल मचरई एंड रॉनी अजनाली। धमाल फोर से सुनते रहिए कहर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: कल ना वर्ल्ड कप के उस मैच की याद आ गई जब एक लाइन बड़ी फेमस हुई थी, वेन मेसी, यानी कि वो काम जो सऊदी अरेबिया ने 2022 फीफा वर्ल्ड कप में किया था वो कल इजिप्ट करने जा रहा था। मिर्ची घड़ी में शाम के 4:03 के करीब होने को आए हैं।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: हाँ जी, तो मैच तो कल हमने शानदार देखा और कह सकते हैं इजिप्ट जिस चीज के लिए आगे बढ़ रहा था काश वो उसे मिलती। फिलहाल के इतने कहेंगे, वर्ल्ड चैंपियंस ने अपनी टाइटल डिफेंड करने के लिए पूरी जान लगाई और आखिरी 13 मिनटों में गेम को बदला। वेल, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है और देखिये खेल की दुनिया में है तो कॉन्ट्रोवर्सी होती रहेगी, पर अब फाइनली सारा का सारा क्वार्टर फाइनल मैच डिसाइड हो चुका है। एक तरफ कल देर रात कोलंबिया के हारने से सब शॉक में थे कि स्विट्जरलैंड ने सबको चौंका दिया, और हमें बात की खुशी थी कि हमारे कतर ने इसी स्विट्जरलैंड को 1-1 से ड्रॉ कराकर रोक दिया था। वेल, वर्ल्ड कप 2026 में अब फाइनली हम नॉकआउट मैचेस की तरफ बढ़ चुके हैं, जहां पर कल पहला मुकाबला फ्रांस मोरक्को का होना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्पेन बेल्जियम का 10th of July, नॉर्वे इंग्लैंड का 12th of July, एंड इसके बाद अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड का मैच 12th of July को सुबह 4 बजे। सब कुछ होगा, लेकिन मस्ट फॉलो गौरव इतना ही कहेगा, जिस तरह से कल इजिप्ट की टीम खेली है, एक जोरदार ताली तो बनती है। बस शानदार मुकाबला, जानदार खेल दिखाया और पूरे गेम पर अपना डोमिनेंस बनाए रखा। आखिरी चंद मिनटों में जरूर अर्जेंटीना की टीम उन पर भारी पड़ी, पर खेल खेल है और जो दिल से खेलता है वही गेम पर इम्पैक्ट बनाता है। और कल जीत भले ही अर्जेंटीना गया, लेकिन दिल से हर फुटबॉल फैन ने इजिप्ट की भी तारीफ की। 89.6 मिर्ची 1 पर फिलहाल शाम शानदार में ढेर सारी बातों की दुकान लेकर मिर्ची पर मस्त मौला गौरव, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vidva la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: Hello, Tejinder ji.
1: हाँ जी,
2: हाँ जी तेजिंदर जी, मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस से आपने अप्लाई कर रखा था पासपोर्ट?
1: जी, हाँ जी किया था।
2: हाँ ये तेजिंदर जी आपका थोड़ा लेट मिलेगा पासपोर्ट, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था मैंने।
1: कितना लेट मिलेगा
2: आपको इसमें? एक सेकंड रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ। अरे इनका तेजिंदर का पासपोर्ट कब मिल रहा है? तत्काल में, आपने तत्काल में बनवाया ना इमरजेंसी में?
1: हाँ जी
2: एक सेकंड। हाँ इमरजेंसी का है सर, 3.5 महीने बाद मिलेगा आपको पासपोर्ट।
1: 3.5 महीने बाद?
2: हाँ जी
1: भाई साहब, तत्काल का क्या मतलब होता है? 5 दिन में मिलता है तत्काल का? तो
2: सर वो मुझे ही मालूम है, मेरे को क्यों समझा रहे हैं। असल में तेजिंदर जी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, आपके आसपास कोई है तो नहीं?
1: नहीं कोई नहीं है।
2: मैं ये कह रहा था हमारा एक बंदा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है, ठीक है?
1: अच्छा।
2: बिल्कुल वो डिक्टो कॉपी लगता है आपका, जीरोक्स लगता है। अच्छा उसको निकलना है दुबई, वो वैसे तो निकल नहीं सकता अपने पासपोर्ट से क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। तो हम कुछ दिन के लिए आपके पासपोर्ट पे से आपका फोटो हटा के ना, आपकी दाढ़ी होती तो चल जाता, उसका फोटो चिपका के आपके नाम से वो दुबई जाएगा, वो 3-4 आदमियों को ठिकाने लगा के वापस आ जाएगा, तो उसमें 3-4 महीने लगेंगे।
1: क्या बोल रहा है भाई, कौन? हेलो।
2: तो मैं उसको बोल देता हूँ, वो वहाँ पे वो आपके घर पहुँचवा देगा, आप फिक्र मत करो। वो बंदा ही
1: हेलो।
2: हाँ बोलिए बोलिए।
1: क्या बोल रहा भाई?
2: आपके पासपोर्ट पे उसका फोटो लगा के आपके नाम से वो दुबई जाएगा, 2-3 को ठिकाने लगाना वापस आ जाएगा, उसका जरूरी काम है।
1: मैं बोल रहा हूँ,
2: मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ।
1: क्या बोल रहा है? क्या
2: आप इतना भड़क क्यों रहे हो? काम आप थोड़ी करने जा रहे हो, काम तो वो लगाने जा रहे हैं ठिकाने।
1: नहीं बात क्या कर रहा है, पासपोर्ट पे किसी और को भेज रहा है
2: यार। आप मेरी
1: तेजिंदर जी नहीं
2: सोचो, वो कितना भड़क रहा होगा, 3 आदमियों को उसको टपका के आना है दुबई में, उसकी भी तो भड़कन सोचो ना। अरे तो यार आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा, 1.5 महीने के लिए आपका नाम यूज कर रहा है, आपका नाम यूज करने में आपकी गाड़ी मांग रहा है क्या? गाड़ी यूज कर रहा है वो?
1: नाम बता पहले तू, कौन रहा है?
2: ये लकी ड्रॉ निकल रहे हैं, वरना किसी और तेजिंदर को भेज देते। आपका मौका लगा, आप ऐसे भड़क रहे हो उल्टा। मेरी बात सुनिए तेजिंदर। तेजिंदर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और तुम रेडियो मिर्ची पे हो। मुझे शालिनी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुमने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तुम्हारा मुर्गा बनाया भाई, तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें दुबई भेज दूँ, उसे नहीं भेजूं।
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, मिर्ची 1, इट्स हॉट।

देखिए सौदा खरा खरा वो होता था जब हम सब्जी वाले से पूछते थे कितने के आलू है, सब्जी वाला कहता था 20 रुपए किलो, फिर हम कहते थे 16 रुपए दे रहे हो तो 5 किलो पैक कर दो। लेकिन अब जिंदगी के दूसरे दौर में है, यहाँ पर आपको सौदा पहले से तय मिलता है, बस आपको खरीद के घर आ जाना होता है हाइपरमार्केट सुपरमार्केट से। वेल वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। फिलहाल गाना गाया दिलजीत पाजी, उनके साथ सुखबीर धोनी भानुशाली, एंड ये एक तरह से रीमेक है सुखबीर के ही गाने का और सुनाया मस्त मौला गौरव ने। हाँ जी, अब बात करेंगे कतर में होने वाले उस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप की जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। हालांकि हम ऑलरेडी एज अ होस्ट नेशन क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन हमारे अलावा और कौन से देश हैं जो आने वाले हैं? 32 देशों की बात कर रहे हैं हम। एशिया से बहुत सारे टीम्स हैं जो तैयार हैं, जिनमें फिलीपींस, जापान, कोरिया, चाइना, ईरान, जॉर्डन, सीरिया, सबके सब लगे हुए हैं। लेबनान से लेकर कतर तक, सऊदी अरेबिया, ये सब के सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह एंट्री मारें। लेकिन हम कहते हैं हम एज अ होस्ट नेशन ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, पर हम बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी हम चाइना जाएंगे, कोरिया जाएंगे, उन्हें अपने घर में भी होस्ट करेंगे ताकि वर्ल्ड कप के टाइम पे हम किसी को हल्के में लेने की भूल ना करें और प्रैक्टिस हमारी लगातार रहे, इंटरनेशनल एक्सपोजर्स के साथ हम बेहतरीन कतर की बास्केटबॉल टीम तैयार कर सके। एक जबरदस्त स्ट्रेटजी, एंड आई एम श्योर जैसी रौनक हमने फीफा वर्ल्ड कप में देखी थी वो हम फीबा वर्ल्ड कप में भी देखने वाले हैं। यस, बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप जब हमारे कतर में आ रहा है तो फाइनल होगा लुसेल अरीना में 12th of September 2027। शुरुआत होगी 27th August, अलग अलग वेन्यू पर ये खेले जाएंगे जिसमें लुसेल अरीना, लतिया अरीना, दुहेल अरीना के अलावा जनूब अरीना भी होगा। तैयार रहिए एक और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के लिए जो हमें बास्केटबॉल का होने वाला है। मिर्ची, इट्स हॉट हबीबी।

0: बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां, कुछ भी बना दिया बेसिर पैर की स्टोरीज, आपने बहुत सारी फिल्मों में देखी, वेब सीरीज में देखी, पर ये वाली अलग है। सच्चाई से इंस्पायर्ड एक ऐसी कहानी जिसको आप अब Z5 पर देख सकते हैं। बात करो मैं सतलज की। यस, किस तरह से जसवंत सिंह डिसअपीयर होते हैं, लेकिन एक बार जब लोगों को लगता है कि ये सब कुछ खत्म हो गया है, तब आते हैं वो जसवंत सिंह बाहर। यस, दिलजीत दोसांझ जिस रोल को प्ले कर रहे हैं, फिल्म में अर्जुन रामपाल भी हैं, एंड कहा ही जा रहा है अगर सब कुछ ठीक है तो ये नेवर सीन बिफोर अवतार है अर्जुन रामपाल का। ऑनेस्ट, ब्रूटल, रॉ, एक्सेप्शनल, एंड कह सकता हूं मैं जसवंत सिंह की ये कहानी जिसे बहुत हद तक दफनाने की कोशिश की गई, लेकिन इतिहास को कभी दफनाया नहीं जा सकता, वो खुद ब खुद भविष्य में बाहर आता ही है। और ऐसी एक कहानी आपको देखने को मिलेगी सतलज Z5 पर। इस मूवी को जरूर देखिए, यू विल कम टू नो क्या खूबसूरत तरीके से डायरेक्ट किया गया है। एंड अर्जुन रामपाल, दिलजीत दोसांझ जब सतलज में साथ आएंगे तो एक तरह से एक ऐसी कहानी जिसे कभी दफनाया नहीं जा सकता। हिंदी Z5 पर आप इसे जरूर देखें, और मुझे पूरा यकीन है आप कहेंगे गौरव अ गुड रिकमेंडेशन। अगर अभी तक आपने Z5 का सब्सक्रिप्शन लिया, देखो इसका सब्सक्रिप्शन लेकर, विश्वास करो ये एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने कभी पहले सुनी नहीं है, लेकिन सच्चाई को और कितने दिन छुपाया जा सकता था, फाइनली बाहर आ गई है, देख लो। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
1: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
2: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
1: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
2: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
3: मिर्ची, इट्स हॉट।
4: अर्ज किया है
5: इरशाद।

आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC

0: का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: मैं तो कहता हूँ ऐसी गर्मी में बद्री की दुल्हनिया क्या, सबको घूंघट ले लेना चाहिए। लड़के अपना गमछे से स्कार्फ से मुंह ढके, लड़कियां अपना ढक ले। भैया इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, सूरज चाचू ब्राइटनेस कम करो, भूल गए लग रहा है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: ये आप तक मैसेज ठीक से पहुंच नहीं रहा है सूरज चाचू, मतलब यार इतने में तो हम भी इतना भाव नहीं खाते। 45 डिग्री सेल्सियस कर दिया आपने और हवाओं के थपेड़ों के बीच ये और ज्यादा ही लग रहा है। 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी भी हवाएं चल रही हैं। हमारे कतर पे ये नॉर्थ वेस्टर्ली विंड जब गर्मी के साथ आई है तो हमें ऐसा फील करा रही है कि लू के थपेड़े एकदम राजस्थान वाले जलते रेत के बीच पे चल रहे हैं। फिलहाल इतने ही कहेंगे, पानी पीते रहो, बॉडी को हाइड्रेट रखे रहो और कोशिश यही करो जितना कम से कम बाहर निकलो सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक, उतना अच्छा, वरना आप अपनी सेहत के लिए जिम्मेदार रहेंगे। इसलिए पानी पीते रहिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए और कानों की गर्मी हम बरकरार रखें। मिर्ची पर एक से गाने सुना रहे, अगला गाना माल मलिक अरिजीत सिंह तुलसी कुमार की आवाज में, एंड ये दिल खुश कर देता है मिर्ची। इट्स हॉट।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: मिलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
3: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, आई वर्क वेरी हार्ड, सो आई नीड दैट फिटनेस लेवल
2: एंड आई नीड योर मोटिवेशन लेवल। मिलिन सोमन, आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
5: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more. All at one place. Call 5572-7387 today.
6: Our business is our business. None of your business.
7: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन बताइए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए?
1: बूढ़ी बाबा, मेरे पति को मेरे हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती, क्या करूँ?
0: तो सिंपल है ना, तुम्हारे हाथ की रोटी मत खिलाओ, आंटी की खिला दो।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस।

0: हाँ जी, ऊंचा लंबा कद गाना आनंद राज आनंद और रुबाई की आवाज में सुनाया किसने? और अभी भी अब बात करेंगे ऊंचे लंबे कद के एक एक्टर की आवाज के बारे में, क्योंकि मिर्ची घड़ी का टाइम 5:05 के करीब होने आ रहा है।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और बारी आ गई खेलने की। एक आवाज जहां पर पूछता हूं, बताओ ये किस एक्टर की आवाज है? आज की ध्यान से सुनिए।
2: ट्विंकल को मैं जानता था, पर बाकी सबको मैं नहीं जानता था। प्रीति को मैं जानता था जब मैं शाम को बाहर जाता था अपने दोस्तों के साथ, तो वो एक दोस्त की फ्रेंड थी और तब मैं मिला था, और उस वक्त उसे क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनना था।
0: ये कौन सा एक्टर है जो बता रहा है इस हीरोइन को जानता था, इसको नहीं जानता था?
2: ट्विंकल को मैं जानता था, पर बाकी सबको मैं नहीं जानता था। प्रीति को मैं जानता था जब मैं शाम को बाहर जाता था अपने दोस्तों के साथ, तो वो एक दोस्त की फ्रेंड थी और तब मैं मिला था, और उस वक्त उसे क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बन।
0: 5000 1896 पे ये कोई तो धुरंधर है जिसने सबसे पहले अपना जवाब भेज दिया है बिना मेरे कहे। 5000 1896 पे बताइए ये किस एक्टर की आवाज है जो मैं अभी आपको राइट ना हो यहाँ रेडियो पर सुनाने जा रहा हूँ।
2: ट्विंकल को मैं जानता था, पर बाकी सबको मैं नहीं जानता था। प्रीति को मैं जानता था जब मैं शाम को बाहर जाता था अपने दोस्तों के साथ, तो वो एक दोस्त की फ्रेंड थी और तब मैं मिला था, और उस वक्त उसे क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बन।
0: 5000 1896 पर मस्मोल गौरव हिंट के रूप में इतने कहेगा कि ये एक्टर जिन हीरोइंस का नाम ले रहा है ना, उनके साथ इन्होंने फिल्में की हैं, वो भी अपने इनिशियल डेज में। 5000 1896 पर इतना हिंट काफी है। चुनरी लहरा दो मिर्ची पर, ये गाना सुन लो। अच्छा।

0: Mirci. Iskabala, puskabala, sakabala. Rambala. Burga, burga. La vizba la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
3: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
3: हाँ जी,
1: हाँ बोलिए।
3: 33501।
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
4: हाय।
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए।
3: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
5: ये बेल जा रही है।
3: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो ना?
1: भाई तो एक बात सुन, ये
3: आपके पास
1: है?
3: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
1: किस चीज से पूछे जा रहे हैं?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
1: ये क्या कंफर्म भाई, मेरा एटीएम कार्ड है
3: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना, दुनिया में अल्लाह
3: नहीं तो
1: थोड़ी ना होता है।
3: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते हैं।
6: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
1: किसने दिया मेरा नंबर?
6: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
1: अरे मैं खुकड़ू को।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
8: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स की गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
9: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
10: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
11: दोनों मिलेगा, दोनों मिलेगा।
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
13: 89.6
14: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हाय गौरव, दिस इज स्मिता विद यू। मेरे ख्याल से ये एक्टर
1: 89.6 मिर्ची वन पर कैसा लग रहा है दूसरे का जवाब सुनने में है जी। आगे आपके साथ
2: मस्त मौला गौरव।
1: यस सर, मस्त मौला गौरव यहाँ आपको बताना चाहेगा कि इस घंटे हम खेलते हैं वो जिसे कहते हैं
3: पहचान कॉल।
1: एक आवाज सुनाता हूँ और पूछता हूँ, बताइए ये आवाज है किसकी।
4: ट्विंकल को मैं जानता था पर बाकी सबको मैं नहीं जानता था। प्रीति को मैं जानता था जब मैं शाम को बाहर जाता था अपने दोस्तों के साथ, तो वो एक दोस्त की फ्रेंड थी और तब मैं मिला था और उस वक्त उसे क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बन।
1: मैंने यही पूछा है कि बताइए ये किस एक्टर की आवाज है। जवाब आने शुरू हो गए।
0: मेरे ख्याल से ये एक्टर बॉबी देओल है एंड आई होप आई एम करेक्ट। थैंक यू।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
5: ये एक्टर का नाम है अर्जुन कपूर।
6: हाय संतोष हियर, दिस हीरो इज लॉर्ड बॉबी।
7: हाय गौरव।
1: ओके ओके,
7: आई थिंक द आंसर इज बॉबी देओल।
8: गुड इवनिंग गौरव,
1: हाउ
8: आर यू, कैसे हैं आप? ठीक
1: है, बढ़िया बढ़िया।
8: अभी जो आपने आवाज सुनाई है वो है बॉबी देओल की आवाज। ओके, थैंक यू, बाय बाय।
1: बिल्कुल, सबसे पहले जिन्होंने बॉबी देओल बोला उन सबको तालियां भाई। 10 सेकंड की क्लिप में आप बता दे रहे हैं कि ये बॉबी देओल है एंड यस दिस इज लॉर्ड बॉबी देओल जिनको हमने सुना एंड वो बात कर रहे ट्विंकल खन्ना एंड प्रीति जिंटा के बारे में जिन दोनों के साथ उन्होंने अपनी शुरुआती फिल्में की एंड दिस इज द राइट आंसर। अर्जुन कपूर वाले भैया आपको सॉरी। इसके अलावा जो लोगों ने लिख के दिया उनको भी दिल से शुक्रिया। मैं सबके नाम एक बार फिर से लेना चाहूंगा। रितेश एक बार फिर से, संजीव भाई, कामरान भाई जिन्होंने लिखा है यस दिस इज बॉबी देओल। इसके अलावा थैंकना चाहेंगे इरफान भाई को जिन्होंने लिखा है बॉबी देओल और साथ ही साथ एक और आंसर आया है लिंगेश भाई ने जो लिखा है बॉबी देओल। अगर बात करें यस संतोष बॉबी देओल। इसके अलावा आपका नाम है महफरीन, हाँ इन्होंने लिखा है बॉबी देओल। कुल मिलाकर बहुत सारे लोगों ने बॉबी देओल ही लिखा भाई, मतलब लोगों ने पहचाना है। वेल, जिन लोगों ने पहचाना उनको दिल से शुक्रिया और जो नहीं पहचान पाए वो कल फिर खेले मेरे साथ। पहचान कौन मिर्ची थॉट
9: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: ये कह रहे हैं दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, हमको लग रहा है टीम इंडिया क्रिकेट को छोड़ छाड़ के इंग्लैंड के खिलाफ लग रहा था हॉकी या कबड्डी खेलने गई है। नहीं मतलब वर्ल्ड चैंपियन वाली फीलिंग तो आई नहीं रही थी, और जब इस तरह का परफॉर्मेंस दिया तो हमें तो लगा क्रिकेट खेलने ही नहीं गए, ये लोग तैयारी करके गए थे कबड्डी की, वहां क्रिकेट खिला दिया गया। भाई आफ्टरऑल इंडियन टीम को अब तक के T20 क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी शर्मनाक हार रनों के लिहाज से इंग्लैंड में मिली है, पूरे 125 रनों की शानदार हार। पर मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गंभीर जी पर गंभीर विचार करने की जरूरत है, ये जिस तरह की कोचिंग दे रहे हैं अभी तो ये सिर्फ T20 के हालात है, ऐसा ना हो वनडे में भी हमें अब तक की सबसे बड़ी हार, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में लगातार हार पे हार, एंड इसी तरह चलता रहा तो गंभीर भैया बहुत गंभीर परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। वैसे बता दें इससे पहले इंडिया की सबसे बड़ी T20 डिफीट 80 रनों की थी, पूरे 45 रन को इजाफे के साथ हम तीसरे T20 में हार कर 2-0 से सीरीज में पीछे हो गए, और मैच पूरे 5 मैच की सीरीज है जिसमें एक मैच पहले ही धुल चुका है, बचे 2 मैच में इज्जत बचा लो टीम इंडिया। हाथ जोड़ के निवेदन है सरपंच साहब, मजाक चल रहा है, कम से कम मैदान पे बाकी खिलाड़ियों को इतना तो उत्साहित करो कि वो रन बनाए, 76 रन बन रहे T20 में, इतना एक खिलाड़ी बनाता था वैभव सूर्यवंशी, उसके आने के बावजूद पूरी टीम नहीं बना पा रही, इसी उम्मीद में कि टीम इंडिया लौटेगी पटरी पर, मस्त मौला गौरव आगे बढ़ता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जिसने जिताया उसको बाहर बिठाया तो यही होगा। संजू भैया बहुत याद आ रही है चाटा तुम्हारी, ए बड़े आनो मिर्ची थॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
3: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता है तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाता रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं आप, यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। यू डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
2: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल्डा। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
1: only on Mirchi, it's hot.

आए है अंकित तिवारी की आवाज में, दिस खूबसूरत रोमांटिक ट्रैक यार, सुना है किसने? और हम सिर्फ अच्छे गाने नहीं सुनाते, आपके लिए करेंसी के अच्छे रेट्स भी हैं लाते विद आई पे। अगर राइट नाउ की बात करूं, एक कतरी रियाल के बदले आपको मिलने वाले इंडियन रुपीस 26.17 है, 26 रुपए 17 पैसे। 1 कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीस 91.78। वही अगर हम जनाब पाकिस्तान रुपीस की बात करें, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.52 पाकिस्तानी रुपीस। वही अगर तपाई को नेपाली रुपीस का रेट छा 41.71 को भल रेट था, यहाँ जी हजूर 41.71 को नेपाली रुपीस का रेट छा। अगर इसके बाद हम बांधू बांग्लादेशी टाका की बात करें दादा, একটা কচরে রিয়াল কে বদলে 33.93 তো 33.93 তো এই রেট আছে। তো আগর বাংলাদেশি ঘর ভেজনা হ্যায় তো টাকা কে লিয়ে এই রেট হ্যায়। মস্ত মোলোবারো কে সাথ মির্চি পর গানো কা ভরপুর পেট হ্যায়, ইয়াহাঁ সুনতে রহিয়ে এন্ড ঘর পয়সে ভেজ কে খুশিয়াঁ বটোরতে রহিয়ে। বিদায় পে মির্চি।

0: हाँ जी मजा आ गया जी ये गाना सुन के। लेकिन देवी और सजनों हम सिर्फ मजा नहीं दिलाते आपको, काम की बात बताते। फिलहाल घड़ी की सुई मिला लो, शाम के 6:02 से अब 3 मिनट की तरफ बढ़ती हूँ।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: हाँ जी तो बारी आ गई है देवी और सजनों इस घंटे अपनी मिक्सी चलाने की,
1: गानों की मिक्सी।
0: और गानों की मिक्सी में आज फिर से दो गाने पीस दिए हैं, जरा ध्यान से सुनिए दोनों गाने।

हाँ जी 5000 1896 पर दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना है और मस्त मौल गौरव को बताना है कि माँ ये जो दो गाने गौरव तुम चला रहे हो मिक्सी में ये दो गाने हैं।

4000186 पर इंतजार कर रहे हैं, गानों की मिक्सिंग कर दी है। अब आपको बताना है गौरव, ये जो दो गाने बज रहे हैं वो ये और ये हैं। 5000186 पर वॉइस नोट पर अपना जवाब भेजिए।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं सेल्यूलर से बोल रहा हूँ। सर हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊँ। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
2: अच्छा,
3: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
2: पास है क्या ये सर्विस?
3: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर, जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा, सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
2: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस का?
3: सर आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
2: और ठीक है,
3: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
2: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
3: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया, अब आपके बॉस ये सुनेंगे, सुनिए।
2: ये क्या है भैया?
3: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
2: तो भी मशीन चलाने आती भी है।
3: सर मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देखे देखिए।
2: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
3: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
2: मजाक कर रहा है तू मेरे से?
3: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, सर सर सर सर सो सॉरी,
2: आई एम
3: सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर आप। हेलो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गाली नहीं सुन सकता सर, मैं इतनी।
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गाली मत दीजिए यार।
3: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया है डब होके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: अर्ज किया है
7: इरशाद, इरशाद।

0: आईबी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईबी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईबी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईबी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा, जा.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
3: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने. हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: गलती से मिस्टेक नहीं भाई, यहाँ पर गलती से ही सही, पर सारे के सारे सही जवाब आते हैं। मस्त मौला गौरव। मतलब जैसे मैं मम्मी को बोलता था, मम्मी गलती से मैंने सही लिख दिया है। मतलब हमें लगता था आंसर गलत है, पर सही होता था। एंड यस, मिर्ची लिसनर्स ने लिखना शुरू कर दिया है जब आज मैंने चलाई गानों की मिक्सी।
1: गानों की मिक्सी।

0: और ये दोनों गाने कौन से हैं बताने के लिए कौन है मेरे साथ?
1: हे मस्त बोला करो, दिस इज योगेश, द सॉन्ग्स नेम इज पलभर ठहरजा एंड हे उड़ी उड़ी फ्रॉम आरएस स्टेडियम. थैंक यू.
2: हाय गौरव.
0: हाय हाय
2: आसमा हियर.
0: जी आसमा,
2: दिस सॉन्ग आर फ्रॉम द मूवी. फर्स्ट वन इज अगर तुम साथ हो फ्रॉम तमाशा.
0: ओए होए क्या बात.
2: एंड द सेकंड वन इज ए उड़ी उड़ी फ्रॉम साथिया.
0: क्या बात है, मतलब आयशा मैडम आपने तो कमाल कर दिया है एकदम आंसर, वो भी पूरे के पूरे लिख कर. वेल इसके अलावा मृगेश भाई जो लिखा है पल पल फ्रॉम तमाशा साथिया टाइटल सॉन्ग. इसके अलावा नहीं है, साथिया का टाइटल सॉन्ग नहीं है सर, वो तो साथिया वो है. इसके अलावा थैंक यू ना चाहेंगे हीना जी को जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है लिख कर, और किसी ने भी जवाब दिया है यस, नाम है इनका तारीख. इसके अलावा थैंक यू कहना चाहूंगा मैं अजय को जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, तमाशा मूवी का गाना है और ए उड़ी उड़ी दूसरा. यार कुल मिलाकर यार सब अपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं. अब मेरा फर्ज क्या बनता है, जब इतने अच्छे गानों की मिक्सिंग की है तो उनको मिर्ची पर चला भी दे, इट्स हॉट.

0: हाँ जी, नैना का कहना जो भी हो, पर मेरा कहना यह है कि सर गर्मी ज्यादा है, थोड़ा ध्यान दो पानी पीने पे। मस्त मौला गौरव, ढेर सारी बातें लेकर इस घंटे में बहुत सारा गेम्स भी हो गया। एंड अब आगे बढ़ते हैं और उस समर कैंप की बात करें तो बिल्कुल गलत नहीं कहूंगा कि हमारे कतर में यूं तो भैया पूरी की पूरी गर्मी के टाइम पर एक से एक समर कैंप चल रहे हैं, लेकिन औकाफ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया अब अपना समर, यस आवर समर आवर वे 2026 प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ इस्लामिक अफेयर्स ने लॉन्च किया 2026 एडिशन। ये हर साल होता है आवर समर आवर वे, यानी कि सेफुना अला काइफिना 2026 की बात करो मैं। एंड 1000 स्टूडेंट्स अक्रॉस 10 दावा सेंटर्स नेशन वाइड ये जा रहे हैं, ये दुआ सेंटर्स में जाकर पढ़ाई करेंगे। एंड कह सकते हैं कि रिलीजियस गाइडेंस इनको यहां पर मिलता है। जुलाई 5th से लेकर 30th जुलाई के बीच ये प्रोग्राम रन कर रहा है। अगर आप बच्चों को यू नो कुरान क्लासेस या ऐसी जगह पर भेजते हैं तो मुझे लगता है कि यहां पर भी एक मौका है कि आप औकाफ मिनिस्ट्री के कैंप में बच्चों को भेजें एंड उनसे बहुत सारी अच्छी आदतों की उम्मीदें करें। इस उम्मीद में कि आपको इस कैंप के बारे में अभी तक नहीं पता था, मस्त मौला गौरव ने बता दिया है। आगे बढ़ते 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
5: अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
6: Dosti kai kusule madam. No sorry, no thank you.
0: Bhai saab, sorry and thank you. हमें दोस्ती नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए।
2: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
7: खूब मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन। It's hot.

0: आगे आगे पैसा चुरा कर भागती पुलिस, पीछे पीछे पुलिस वाले का पीछा करता वो ट्रक ड्राइवर। नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही सुना है आपने कि आगे आगे पैसा चुरा कर भागता पुलिस वाला और उसका पीछे बस दौड़ाता, मीन्स ट्रक दौड़ाता, टैक्सी नहीं, ट्रक ड्राइवर।
1: क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो?
0: अरे हुआ कुछ यूं कि एक ट्रक ड्राइवर ने पुलिस वाले का पीछा किया। ये सब इंस्पेक्टर साहब थे, लगभग 35 किलोमीटर तक इनका पीछा कर फाइनली इनको पकड़ा, क्योंकि पुलिस वाले ने इसकी ट्रक से 20,000 रुपए इनके केबिन से निकाल कर भागने की कोशिश की और यूपी के हमीरपुर में धरे गए। फिर क्या था, वीडियो वायरल हो गया जहां पर ट्रक ड्राइवर ने पुलिस वाले को दे तमाचे लगाए और उसके बाद अपना पैसा लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया और FIR भी उसके नाम से कराई। मतलब सीन बिल्कुल उलट है। हम अक्सर सुनते हैं पुलिस वालों ने दौड़ा कर ट्रक वाले को पकड़ा ओवरलोडिंग के लिए, फलाने के लिए, ढिमकाने के लिए, लेकिन यहां मामला बिल्कुल उल्टा पड़ गया। भाई साहब, ट्रक ड्राइवर ने पुलिस वाले को चोरी करते पकड़ लिया है, अब उल्टा चोर वाकई में कोतवाल को डांट रहा है। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहते हैं कि कभी कभी जिंदगी में उल्टे केसेस भी हो जाते हैं, हर बार पुलिस वाले सही हो ये भी जरूरी नहीं, और जब धरा जाए तो इस तरह से उनका वीडियो भी वायरल हो जाता है। इसी उम्मीद में भाई साहब कि आपकी जिंदगी में आप वाकई में बड़े अलग हैं कि आपको ये एक्सपीरियंस मिला, वरना बहुत लोग उल्टे में ही गए और तमाचे भी खाए, पैसे भी लगाए, डंडे भी खाए। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: Hollywood Bollywood Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: गोविंदा आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
3: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
2: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
3: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
2: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
3: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं, इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
2: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: अर्ज किया है
5: इरशाद, इरशाद

0: IPay payments ka wah tarika. With IPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
3: बार बार
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ ना तो नींद आ जाती है।
3: क्यों नहीं हो रही पढ़ाई?
1: क्या करूँ?
2: अरे घोचू, तो लेटे लेटे पढ़ना, अच्छे से सो भी पाएगा रे तू।
4: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: माशुका महमूद राघव चैतन्य अरुआ के आवाज में गाना कहाँ सुना आपने? मिर्ची पर किसने सुनाया?
1: मस्त मौला गौरव।
0: लेकिन अब चाइना की ये नई टेक्निक बतानी है, उसको सुनाते हैं 7:04।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: भैया सिर्फ यूरोप हीट वेव से परेशान नहीं है, चाइना में भी टेम्परेचर काफी हाई है एंड कुछ शहरों में ये 44-45 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है और कंट्री ने इसके लिए बकायदा एक रूफ टॉप रेन सिस्टम बना दिया है, यानी कि कृत्रिम बारिश जो कि आर्टिफिशियल तरीके से कराई जाती है। इसके लिए क्या होता है, एक मिस्ट स्प्रेइंग कूलिंग सिस्टम है जो कि इंस्टॉल किया जाता है हाई राइज अपार्टमेंट जितने कॉम्प्लेक्स हैं उन सारी बिल्डिंग्स में, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे ऊपर लग जाते हैं ये मिस्ट फेंकने वाले एक मशीन के सिस्टम, और ये बिल्कुल ऐसे पानी को स्प्रे करते हैं। ये नहीं पाइप लेके पानी डालने, वैसा नहीं, स्प्रेइंग कूलिंग सिस्टम होता है। जैसे ही हाई राइज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में लगाया जाता है वहां से जैसे ही नीचे ये पानी जाता है 5-8 डिग्री सेल्सियस 5-6 मिनट के अंदर कम हो जाता है। एंड ये अब तक 12 रेसिडेंशियल बिल्डिंग लगाया गया, $2.43 मिलियन का इसमें इन्वेस्टमेंट आया है। पर बड़ी बात यह है कि पूरे एक शहर का एक इलाका जो है उसका टेम्परेचर कम हो जा रहा है। क्या आने वाले टाइम में ये बाकी शहरों बाकी कंट्रीज के लिए भी आने वाले टाइम में ये एक मिसाल बनेगा, एग्जाम्पल बनेगा? हमें लगता है इसका जल्द ही इस्तेमाल हमारे वेस्ट बे एरिया में भी होना चाहिए और अगर सब कुछ सही रहा तो कतर के अलग अलग इलाकों में भी। चलिए जी, गर्मी तो हमारा भी पड़ती है पर हम लोग अभी भी वो हैं जो गर्मी भी कहते हैं अभी भी। वाह गर्मा गर्म करक 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Na virtuala murga. Milchi, murga.
2: Hello.
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
2: अभी कोई और बोल रही थी?
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
10: थैंक यू
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
12: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
13: ओ भाई जोश है फुल हाई, और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
14: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
15: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: नहीं, ये खबर पे आपके कान गए होंगे पर ध्यान नहीं गया है।
1: मस्त मौला गौरव।
0: यस भैया, कि हमारे कतर में इवनिंग स्टडी सिस्टम जो है वो अब 37 प्राइवेट स्कूल्स में आ चुका है।
2: #974 the most trending local news of the day।
0: पढ़ाई की बढ़ती डिमांड और स्कूल में कैंपस की कमी, यानी कि यूं कह लें लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन हर स्कूल से कह रही थी कि आपको एक्सपेंशन करना है, लेकिन जब जगह नहीं थी स्कूल वालों के पास तो इवनिंग स्टडी सिस्टम अक्रॉस कतर प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में आया और इस वक्त 37 प्राइवेट स्कूल एंड स्कूल ब्रांचेस ऐसी हैं जो इस इवनिंग क्लास का हिस्सा हैं। और बड़ी बात यह, इसमें एक बड़ा नंबर हमारे इंडियन करिकुलम स्कूल्स का है। उसके बाद नेशनल स्टैंडर्ड करिकुलम की बात करें, वहां पर भी ब्रिटिश, सीरियन, इजिप्शियन एंड इसके अलावा कई और इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम जो है वो अब इस इवनिंग स्कूल को चला रहे हैं। वेल, इवनिंग स्टडी सिस्टम कहीं ना कहीं बच्चों के लिए अच्छा भी है भाई, सुबह की नींद भी पूरी हो जाती है, स्कूल में पढ़ाई लिखाई भी हो जाती है और शाम के टाइम दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत बातचीत करके वापस बैक टू पवेलियन। वेल, कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में इस तरह की फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज और बढ़ने वाली है, क्योंकि हमारे स्कूल्स में जहां पर कैपेसिटी कम है वहां पर इस तरह के ऑल्टरनेट सिस्टम से बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी फायदा होता है और पेरेंट्स के लिए भी चीजें इजी होती है, उनके बच्चों का एडमिशन के लिए दिमाग नहीं लगाना होता ज्यादा। 9.6 मिर्ची 1 पर ये बात आपके कान में तो गई थी, आज मैंने ध्यान से बता भी दी। मिर्ची इट्स हॉट।
3: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद, इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

आ गई आ गई आ गई, एक बार फिर से आम के मजे लूटने की बारी आ गई। मस्त मौला गौरव, आपको बता दे कि 400 की मैंगो की वैरायटी पाकिस्तान मिलती है, लेकिन उनमें से कुछ खास जैसे कि सिंदरी चौसा, व्हाइट चौसा, अजीम चौसा, ब्लैक चौसा, इसके अलावा अनवर रतोल, दशहरी, फजरी, ये सारे के सारे आम हमारे कतर में लगने जा रहे हैं। यस, थर्ड पाकिस्तानी हम्बा फेस्टिवल की तैयारियां जोर शोर पर, और कल शाम से ये रौनक लगने लगेगी। 18 जुलाई तक चलने वाले 10 दिनों के इस आम के मेले में एक बार फिर से आम के डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट एंड इसके अलावा कुछ सीजनल फ्रूट्स भी आपको मिलेंगे। वेल, अलग अलग वैरायटी जरूर है, लेकिन स्वाद बिल्कुल वैसे ही है जैसा हम खाते आए। तो मुझे पूरी उम्मीद है अब इंडिया वाले मैंगो एग्जीबिशन को चख लिया, पाकिस्तानी की बारी आई है। चलिए जी, ऑल दी बेस्ट। फिलहाल के लिए बस बोलकर इतना ही कहेगा कि आम को खास हम ही बनाते हैं जब हम उसके साथ खास एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आम की ऐसी कोई एक्सपेरिमेंट वाली डिश आपने बनाई है तो खिलाइए, किस बात के लिए शर्मा रहे हैं, फटाफट बनाकर लाइए मिर्ची वन कतर के स्टूडियोज, हम पूरे कतर को आपकी इस रेसिपी को बता देंगे। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: आमिर खान इतनी सारी फिल्में और हर फिल्म में एक अलग फिजिक. What is the ultimate fitness tip?
3: I know everyone says this, but I can't stress how important it is to be regular in your workout. And along with that, for the best results, you need to have a very balanced and healthy diet. आम तौर पे लोग high protein diet करते हैं. You know, that's not healthy. The body needs proteins, but also needs carbohydrates. It needs fat. It needs everything. So we must have a balanced diet and a healthy diet and rest. You have to sleep well. You have to rest well.
2: Sleep well. ओहो हो हो, फिर तो फिट होना मुश्किल है आमिर खान. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा.
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
4: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना.
5: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
7: Qatar ka number one radio station. 89.6 FM. Mirchi 1. It's hot.

नहीं, गर्मी में नहीं, जाड़े में लौंग इलायची और अदरक पड़े तो आनंद अलग होता है चाय का। चले जी, मस्त मौला गौरव आपके साथ है और हम वो लोग हैं जिनको चाय के लिए सुबह शाम दोपहर देर रात कभी भी पूछो ना नहीं करते। भाई चाय चीज ही ऐसी है जिसके लिए ना कैसे किया जाए, और जो नहीं पीते वो हमारी इस बात को समझ भी नहीं सकते। इस उम्मीद में कि आप भी ऐसे ही चाय लवर हैं और चाय के लिए आपको बस बहाने ढूंढने पड़ते हैं, तो आप मेरे जैसे हैं, कभी हमें भी चाय में बुला लीजिए। हम बुलाएंगे तो आप कहेंगे बड़ी खराब चाय बनाते हो, लेकिन हमें पता है आप बहुत अच्छी बनाते हैं। चलिए, जिस उम्मीद में कि कभी हम आप मिलकर साथ बैठकर चाय पिएंगे, गपशप लगाएंगे, ढेर सारे बातों को एक बार फिर से याद करेंगे। मस्त मौला गौरव ले रहा अलविदा, कल वीकेंड की वाइब सेट करने एक बार फिर से आएगा शाम शानदार लेकर यही मिर्ची पर। तब तक के लिए कान गड़ाए रहो, वॉल्यूम बढ़ाए रहो और मिर्ची लगाए रहो, क्योंकि 89.6 मिर्ची वन हॉट है हरारा कतीर।

0: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: हाय गाइस, मैं हूं अपार शक्ति खुराना और आप सुन रहे हैं मिर्ची कैफे पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
1: आपको पता है इस कमरे की बेस्ट बात मुझे क्या लगती है? जिस छोटे से स्टूडियो में हम बैठते हैं एक प्यारे से माइक के साथ, कि यार एक बंद कमरे में बैठकर मैं इतने लोगों से मिल पाती हूँ और इतनी सारी बातचीत कर पाती हूँ और अपनी बातचीत आपको भी सुना पाती हूँ।
2: मिर्ची कैफे।
1: हाय, सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे, मेरा नाम है पारुल। अपार शक्ति खुराना इज इन कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन मिर्ची कैफे और हमने काफी इंटरेस्टिंग बातें करी, गेम्स खेले। एंड आई एम श्योर हम सभी ना कभी ये जरूर सोचते हैं कि अपार शक्ति का नाम कितना शक्तिशाली है यार, तो वही मैंने पूछ लिया उनसे। तो ये सब आपको बहुत बार बहुत लोग कह चुके होंगे कि आपके नाम में ये जादू है कि आप लॉयर, क्रिकेट कैप्टन, आरजे थिएटर आर्टिस्ट, होस्ट, एक्टर, सिंगर, कंपोजर, म्यूजिशियन, लिरिसिस्ट, कैसे कर ले रहे हो सारे काम
0: यार। बार ऑनेस्टली प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना एक मुझे तकलीफ है कि एक जगह पे टिक के ना बैठने की।
1: अच्छा, okay.
0: कुछ ना कुछ चलते रहने की, कुछ ना कुछ करते रहने की, एंड आई थिंक दैट प्रॉब्लम ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी। And touch wood, I'm happy that I have this problem. I'm suffering from this disease.
1: What a lovely disease to have. मैंने सुना है कि आप बड़े विचित्र विचित्र जगह पे बैठ के गाने लिखते हो, तो सबसे पहले हम इन गानों के बारे में बात करेंगे। तेरे पीछे कहाँ बैठ के आपने लिखा? Because you're also a co-lyricist there.
0: Absolutely. वो कुछ इस तरीके से ही, you know, बातें शुरू हुई थी कि and यार I do have a weird knack of I keep doing something or the other, तो इसलिए पता नहीं चलता है कब कहाँ पे क्या सही चीज निकल आएगी। But majority of the time it has happened on a flight, because उस time पे फोन नहीं चल रहा होता है, आप एकांत में अकेले, you have more time to spend, you know,
1: so you can
0: with yourself.
1: क्या pen and a paper?
0: नहीं यार, मैं अपने इस फोन पे लिख लेता हूँ notes में. And honestly, I normally rather straight away record on the voice track. So वैसे करता हूँ, लेकिन
1: शब्द और म्यूजिक एक साथ सोचते हो?
0: हाँ जी, वही बोल रहा हूँ, एक साथ सोचते हैं।
1: यार जितने भी म्यूजिशियंस आर्टिस्ट से मैं मिलती हूँ ना, मुझे बड़ा मजा आता है जानने में कि उनका राइटिंग का या यू नो सिंगिंग का प्रोसेस क्या है, क्योंकि बेसिकली तो हर शख्स, हर आर्टिस्ट एक इंसान है ना सबसे पहले, और हम लोग लाइफ में पता नहीं क्या क्या चीजों से गुजर रहे होते हैं, बट देन व्हेन वी आर एट वर्क, जब हम कुछ लिख रहे हैं या जब हम कुछ गा रहे हैं, तो वो क्या प्रोसेस होता है जिससे वो सब चीजें होती है, ये मुझे जानने में बड़ा मजा आता है। और भी बातचीत जारी रहेगी अपार शक्ति खुराना के साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची कैफे, मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। सुनिए ये बहुत प्यारा सा गाना, एंड स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Gambana. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो तेजिंदर जी।
2: हाँ जी
3: हाँ जी तेजिंदर जी, मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस से। आपने अप्लाई कर रखा था पासपोर्ट?
2: जी हाँ जी किया था।
3: हाँ ये तेजिंदर जी, आपका थोड़ा लेट मिलेगा पासपोर्ट, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था मैंने।
2: कितना लेट मिलेगा
3: आपको इसमें? एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे इनका तेजेंद्र का पासपोर्ट कब मिल रहा है? तत्काल में, आपने तत्काल में बनवाया ना इमरजेंसी में?
2: हाँ जी
3: एक सेकंड। हाँ इमरजेंसी का है सर, 3.5 महीने बाद मिलेगा आपको पासपोर्ट।
2: 3.5 महीने बाद?
3: हाँ जी
2: भाई साहब, तत्काल का क्या मतलब होता है? 5 दिन में मिलता है तत्काल का? तो
3: सर वो मुझे ही मालूम है, मेरे को क्यों समझा रहे हैं। असल में तेजेंद्र जी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, आपके आसपास कोई है तो नहीं?
2: नहीं कोई नहीं
3: है। हम ये कह रहा था, हमारा एक बंदा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है, ठीक है?
2: अच्छा
3: बिल्कुल, वो डिक्टो कॉपी लगता है आपका, जीरोक्स लगता है। अच्छा उसको निकलना है दुबई, वो वैसे तो निकल नहीं सकता अपने पासपोर्ट से क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। तो हम कुछ दिन के लिए आपके पासपोर्ट पे से आपका फोटो हटा के ना, आपकी दाढ़ी होती तो चल जाता, उसका फोटो चिपका के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। वो 3-4 आदमियों को ठिकाने लगा के वापस आ जाएगा, तो उसमें 3-4 महीने लगेंगे।
2: क्या बोल रहा है भाई, कौन? हेलो।
3: तो मैं उसको बोल देता हूँ, वो वहाँ पे वो आपके घर पहुँचवा देगा, आप फिक्र मत करो। वो बंदा ही
2: बात सुन। हेलो।
3: हाँ बोलिए बोलिए।
2: क्या बोल रहा भाई?
3: आपके पासपोर्ट पे उसका फोटो लगा के आपके नाम से वो दुबई जाएगा, 2-3 को ठिकाने लगाना है, वापस आ जाएगा, उसका जरूरी काम है।
2: मैं बोल रहा हूँ,
3: मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ।
2: क्या बोल रहा है? क्या
3: आप इतना भड़क क्यों रहे हो? काम आप थोड़ी करने जा रहे हो, काम तो वो लगाने जा रहे हैं ठिकाने। यार आप मेरी तेजेंद्र जी,
2: नहीं
3: सोचो वो कितना भड़क रहा होगा, 3 आदमियों को उसको टपका के आना है दुबई में, उसकी भी तो भड़कन सोचो ना। अरे तो यार आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा 1.5 महीने के लिए, आपका नाम यूज कर रहा है, आपका नाम यूज करने में आपकी गाड़ी मांग रहा है क्या? गाड़ी यूज कर रहा है वो?
2: नाम बता पहले।
3: ये लकी ड्रॉ निकल रहे हैं, वरना किसी और तेजेंद्र को भेज देते। आपका मौका लगा, आप ऐसे भड़क रहे हो उल्टा। मेरी बात सुनिए तेजेंद्र। तेजेंद्र मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और तुम रेडियो मिर्ची पे हो। मुझे शालिनी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुमने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तुम्हारा मुर्गा बनाया भाई। तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें दुबई भेज दूँ, उसे नहीं भेजूं।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, cute little bangle for the newborn. अरे यार, holiday season is here, और फिर वही gifting का tension. फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ, buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
5: तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
8: कम है के?
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: आपको बताया, मैं हमेशा सोचती हूँ कि वो इंसान जो गुस्से में भी काम रह सकता है उससे बढ़िया कोई इंसान नहीं हो सकता. नहीं,
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप. मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. और गुस्से वाली बात मुझे इसलिए याद आई क्योंकि यू नो दे से कि जैसा आप गुस्से में बिहेव करते हो या जो जो बातें आप बोल देते हो वो दिखाती हैं कि एक्चुअली आपके अंदर क्या चल रहा है, चाहे आप कितना भी प्रटेंस में जी रहे हो. नहीं, सो या दैट इज द स्ट्रगल, अपने आप को काम डाउन रखना गुस्से में. दैट्स रियल एफ आर. वेल बात ये चल रही है अपार शक्ति खुराना से यहाँ पर. और अपार बड़े काम रहते हैं, बड़े संगीतमय रहते हैं, ये मैं देख रही थी. और अपार, मुझे अब ये जानना है कि एक गाना आपने लिखा था तेरे पीछे, बहुत ही क्यूट उसका ईपी था, बहुत ही प्यारा वीडियो, बहुत ही प्यारा फील ऑफ द सॉन्ग, कुछ लिरिक्स भी इंटरेस्टिंग आ रहे थे. तो मुझे प्लीज बताओ तो पूरा प्रोसेस कि कैसे आप कोई गाना लिखते हो और कैसे बनाया ये गाना आपने.
2: टॉकिंग अबाउट तेरे पीछे, यार मैं अपनी बीवी के साथ गया हुआ था डिनर करने के लिए. जैसे वो इंस्ट्रूमेंटल नहीं चल रहा होता है, पीछे गिटार की स्ट्रमिंग हो रही होती है, वो चल रहा था यार. एंड उसमें कोई और धुन थी, बट वेरी वियर्डली दिस केम टू माई माइंड जो तेरे पीछे का होके. एंड देन उसकी मेजरली लाइंस आई थी. एंड देन आई स्पोक टू साक्षी रत्ती एंड मीर देसाई. आई वर्क विद देम अ लॉट एंड दे रियली ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी एज अ म्यूजिशियन. तो यार बस उसके बाद धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती रही. और जब मेरी फेवरेट लाइन मुझे यू नो साक्षी रत्ती ने लिख के भेजी, बहुत लोगों ने ना गुलाबी आंखों की बात करी है, नशीली आंखों की बात करी है, बहुत कम लोगों ने बादामी आंखों की बात करी है. एंड इट हैज यू नो two meanings to it. First, the almond shaped eyes and the almond brown. So hence it goes like akhane badami vich sur me dilod kiya mere jeh chhatti piche aashiqan di thod kiya gardan surahi utto mala pai motiyan di tu te main kafi sanu lod kiya bahutiyan di
0: बिल्कुल भी बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू दिस सॉन्ग. सुनो इस प्यारे से गाने को बहुत ही प्यार से, ओनली ऑन मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ. ऑन मिर्ची, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिनको आप कभी भी भूल ही नहीं सकते, और जब भी आप उनको सुनते हो आपको वो पहली मोहब्बत टाइप फीलिंग आती है. दिस वॉज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स. नहीं,
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप. मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. आदेश श्रीवास्तव की कॉम्पोजिशन, सोनाली बेंद्रे द प्रिटी चार्मिंग गर्ल बैक देन, यू नो हमारे रहमान डकैत, अक्षय खन्ना का भी बहुत प्यारा सा चार्म इन दिस फिल्म. यार ये दहक मूवी जो थी ना, ये तो मैंने नहीं देखी आज तक, ऑनेस्टली टेलिंग यू. लेकिन ये गाना मैं जब भी सुनती हूँ आई फील लाइक अ यंग लिटिल गर्ल हु इज जस्ट अबाउट टू फॉल इन लव. ये मैजिक होता है कुछ गानों का. Especially this pairing of Hariharan Saab and Sadhana Sargam, na? Lovely song. Anyway, talking of Barish ke gaane, Apar Shakti Khurana is in conversation with me on Mirchi Cafe. Apar, kya aisa moment raha hai aapka Barish wala? You know, you just have to tell me that right now.
2: As old school I am in love, ye hua nahi kabhi. By chance nahi hua.
0: Seriously?
2: By chance nahi hua. Okay. I mean, you know, it's very situational. Okay. Main nahi tha unke saath jab Barish ekdam se ho gayi. Main akela hi tha. Tanha.
0: अगर आपका कोई ऐसा प्यारा सा बारिश का मोमेंट है और आपके पास कोई ऐसा गाना है मुझसे रिक्वेस्ट करने के लिए, यू कैन राइट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 9930983983, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हैं parul.world. प्लीज वहां जाके बताओ आपकी प्यारी सी बारिश की रोमांटिक स्टोरी और आपका फेवरेट गाना. ओके, हो सकता है अगले एपिसोड में मैं आपके लिए चला दूंगा. फिलहाल अगला गाना सुनो, ओनली ऑन मिर्ची कैफे. सुन रहे हैं आप मेरे यानी पारुल के साथ. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: जॉन अब्राहम, आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री?
3: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन एंड आई टेल यू व्हाई, क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है, टाइगर श्रॉफ फैंटास्टिक बॉडी, रणवीर सिंह एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फिट, एंड ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन. ऑनेस्टली अमंगस्ट ऑल दीस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई थिंक सबसे फिटेस्ट इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार, एंड आई मीन होलिस्टिकली फिट. ही कैन सर्वाइव एनीवेयर. अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार विल बी द ओनली गाय हु विल सर्वाइव एंड कम आउट.
2: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम. अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: Our business is our business, none of your business.
5: Par didi, our entertainment is your entertainment. Entertainment,
6: entertainment. Qatar ka number one radio station.
7: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: आप सुन रहे हैं मिर्ची कैफे मेरे आने पारुल के साथ ओनली ऑन मिर्ची। और अपार शक्ति खुराना के साथ बातचीत हो रही थी और वो गाना मैं ना याद करूं ऐसा हो नहीं सकता। आपने भी सुना होगा ना, बैठी कितने बदला तो दूर होनी है, मेरे वांगू ओ भी मजबूर होनी है, सुन दिता गल भी जरूर होनी है, सुन दिता गल भी जरूर होनी है।
1: मिर्ची कैफे।
0: इस गाने के पीछे की सारी कहानी आई रियली वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू। और अपार, आप ये गाना हमारे लिए गाएंगे भी राइट हियर ऑन मिर्ची कैफे, बताइए ना प्लीज, जरूर की जर्नी।
2: यार जरूर तो हैज रियली डिफाइंड यू नो माय म्यूजिक जर्नी सो फार। मैं कब से म्यूजिक करता आ रहा हूँ, रादर रेडियो डे से म्यूजिक करता आ रहा हूँ। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू म्यूजिक प्रोफेशनली, एक्टिंग से भी पहले आई वॉन्टेड टू डू म्यूजिक प्रोफेशनली। मुझे नहीं पता था कि ये एक गाना मुझे इतना प्यार दे जाएगा। कुड़िये नी जरूर एंड दिस सॉन्ग का लफ्जा, तीनों बहुत अलग अलग गाने हैं, बट जब जरूर और लफ्जा आता है ना, लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि यार दिस इज यू नो थेरेपी। अगेन यार इट रियली कम्स डाउन टू दोस दैट प्योरिटी ऑफ थॉट एंड सैवी हैज डन दैट अगेन एंड अगेन। मैं तो ऑलरेडी बिना जरूर की बात किए अपा फिर मिलेगी बात कर रहा था मैं तो आपके साथ। द मोमेंट द सॉन्ग स्टार्ट्स यू नो, बैठ के तो बदला तो दूर होनी है, मेरे वांगू भी मजबूर होनी है, सुन दी तो गल भी जरूर होनी है, सुन दी तो गल भी जरूर होनी है। इट रियली एकदम से ना, एक आपने जैसे बोला कि यार थॉट्स आ जाते हैं दिमाग में, पिक्चर बन जाती है, इसीलिए रेडियो ऑडियो ये जो मीडियम है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये आपके हैंड राइटिंग है?
0: हाँ जी।
2: कितनी सुंदर हैंड राइटिंग है यार गाइस, आप देख रहे हो पारुल की हैंड राइटिंग देख रहे हो आप, ये कमाल है। वॉइस को ऐसे कर्सर में लिखना क्यों नहीं आता है बताओ ना मुझे।
0: अब भाई देखो, बॉयज को कर्सिव में लिखना ढंग से आता है या नहीं आता है ये तो हमने नहीं सोचा है, बट मैंने एक्चुअली ये भी नहीं सोचा था कि अपार के साथ इतनी अमेजिंग कॉन्वर्सेशन होगी। एंड अपार ने अचानक से मेरे कुछ लिखे हुए क्वेश्चंस की नोट्स देख ली और मेरी राइटिंग की, ओफ जो उन्होंने तारीफ करी, आई वॉज लाइक सो हैप्पी एंड एम्बैरस्ड एट द सेम टाइम। पर कभी कभी ना वाकई जो हमने नहीं सोचा वो हो जाता है, और कहते हैं ना कि जो नहीं सोचा हो वो हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसके अंदर ऑलमाइटी की ब्लेसिंग्स होती हैं, है ना। ऐसे ही मोमेंट्स हम सबकी लाइफ में हमेशा आते रहें और बहुत सारी हैप्पीनेस और मस्ती चलती रहे, इसी विश के साथ मिर्ची कैफे का ये एपिसोड करती हूँ मैं यहाँ पे टाटा। और अगला गाना जो आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ फरहान अख्तर का, उसमें भी वो बहुत कुछ सोच रहे हैं, आप भी साथ साथ सोचिए और सुनते रहिए मिर्ची। मैं आपसे मिलूंगी थोड़े वक्त बाद, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है यार कि रात के 9 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू उंगली और मिर्ची।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

ये कपूर खानदान की बहू हैं, ऋषि कपूर की वाइफ हैं, रणबीर कपूर की मम्मा हैं, आलिया भट्ट की सास हैं, राहा कपूर की दादी हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी मैं बात कर रही हूँ नीतू सिंह की। उनके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन हमको पता है, वो शायद इसीलिए क्योंकि जब वो अपने करियर की पीक पे थी उन्होंने शादी कर ली और कपूर खानदान की बहू बन गई, अपना फिल्मी करियर छोड़ दिया। वैसे इनका असली नाम है हरनीत कौर। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट जब फिल्मों में काम करना शुरू किया तो बेबी सोनिया सिंह नाम से किया, उसके बाद बड़ी होकर जब फिल्में करने लगी तो नीतू सिंह के नाम से। आज इन्हीं के बारे में करेंगे बातें, ऑफ कोर्स इनके गाने भी सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, क्या बना? मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: हाय, ये कॉल बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
5: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
3: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
5: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
3: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
5: हाँ जी,
3: हाँ बोलिए।
5: 33501।
3: अच्छा
5: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
3: हेलो,
5: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
6: हाय।
5: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
6: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
5: धोबी से
6: पूछ लीजिए।
5: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
3: हेलो
5: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर। ये बेल जा रही है। हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
3: अरे भाई, तो एक बात सुन, ये आपके पास
5: पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
3: किससे पूछे जा रहे हैं?
5: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
3: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
5: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
3: मुझे बताना है सबको, थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना।
5: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
7: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
3: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
3: अरे मैं खुकड़ू को।
8: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
9: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
8: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

भाई नीतू सिंह बेसिकली दिल्ली की हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उनका जन्म दिल्ली में हुआ था, लेकिन जब वो 5 साल की थी उनके पेरेंट्स दिल्ली से बॉम्बे आ गए थे। उनकी मदर राजी सिंह वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी और उन्होंने काफी कोशिश भी की, फिल्मों में कुछ कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम भी किया और साथ ही साथ अपनी बेटी के लिए भी एज अ चाइल्ड एक्टर उन्होंने फिल्मों में काम ढूंढना शुरू कर दिया। इसी बीच जब नीतू सिंह जी के फादर की डेथ हो गई तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए नीतू सिंह की मम्मा ने और एक्टिवली उनके लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया। एज अ चाइल्ड एक्टर नीतू सिंह ने काफी फिल्मों में काम किया है, करेंगे उसके बारे में भी बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
4: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
3: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
4: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
7: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
8: बहुत कुछ होगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

भाई नीतू सिंह जब 7-8 साल की थी उनको वैजयंती माला जी ने नोटिस किया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वैजयंती माला जी का एक डांस स्कूल था जिसमें नीतू सिंह एज अ चाइल्ड जाती थी। उन दिनों वैजयंती माला जी की एक फिल्म के लिए चाइल्ड एक्टर को ढूंढा जा रहा था। ये फिल्म थी 1966 की सूरज, जिसमें वो गाना है ना, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, वो वाली फिल्म। तो इस रोल के लिए नीतू सिंह को, जो तब बेबी सोनिया थी, साइन कर लिया गया। फिर लेट 60s में काफी फिल्मों में इन्होंने एज चाइल्ड एक्टर काम किया। 10 लाख, 2 दूनी 4, वारिस, घर घर की कहानी, पवित्र पापी एंड सबसे पॉपुलर, सबसे प्यारा रोल इनका दो कलियां फिल्म में, जहां पे इन्होंने दो जुड़वा बहनों का रोल किया था। इतनी अडोरेबल है ना नीतू सिंह उसमें, इतनी अडोरेबल, सदके वारी जाऊं। मतलब वो फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है इन्हीं की वजह से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: मिलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
4: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, आई वर्क वेरी हार्ड, सो आई नीड दैट फिटनेस लेवल
3: एंड आई नीड योर मोटिवेशन लेवल। मिलिन सोमन, आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
3: बार बार।
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
4: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

0: नीतू सिंह जब सिर्फ 8 साल की थी तब उनकी पहली फिल्म आई थी एज अ चाइल्ड एक्टर।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।
2: जी बॉम्बे में वो वैजयंती माला जी के डांसिंग स्कूल में थी जहाँ पे वैजयंती माला जी ने उनको नोटिस किया और वो 1966 की फिल्म सूरज में कास्ट हुई। उसके बाद काफी फिल्में की इन्होंने एज अ चाइल्ड एक्टर, इंक्लूडिंग द वेरी फेमस दो कलियां। 1970 तक ये एज अ चाइल्ड एक्टर काम करती रही बाय द नेम ऑफ बेबी सोनिया। उसके बाद इनकी फैमिली फिर 3 साल के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गई बॉम्बे से। ओरिजिनली वो दिल्ली से ही पहले आए थे। जब नीतू सिंह 5 साल की थी तब वो दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुए थे। एंड देन अगेन जब नीतू सिंह 15 साल की थी इनकी फैमिली बॉम्बे शिफ्ट हो गई। स्पेशली इनकी मदर एक्टिवली इनके लिए काम ढूंढने लगी और तब इनको इनकी पहली फिल्म मिली 1973 में रिक्शा वाला, जिसमें रिक्शा वाला थे रणधीर कपूर। बिल्कुल मैच नहीं होता, बिल्कुल सूट नहीं होता, इसलिए फिल्म भी फ्लॉप हो गई। रणधीर कपूर यानी कि इनके जेठ जी के साथ इन्होंने काफी फिल्में की थी, तब थोड़ी ना पता था कि आगे जाके जेठ जी बनने वाले। वेल इनकी एक साथ में मूवी थी ढोंगी जिसका यह गाना बहुत सही है, इसका रीमिक्स भी काफी पॉपुलर हुआ था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
1: हमारी काम वाली बाई बहुत इरेगुलर है, हर दूसरे दिन नहीं आती, क्या करूं?
2: वेल इट्स सो सिंपल यार, हर दूसरे दिन नहीं आती ना, तो उसको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही काम पे रखा कर। या इट्स जस्ट अमेजिंग, फैंटास्टिक, सिंपल।
3: रॉक रॉक

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: रात के बज चुके हैं 10, मिर्ची पे शो का नाम पुरानी जीन्स।

नीतू सिंह जी हिंदी फिल्मों के फेम गेम में कब आई? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। देखो एज अ चाइल्ड एक्टर तो उन्होंने काफी फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्म दो कलियां, उसमें वो इतनी अडोरेबल लगी हैं, वो बहुत पॉपुलर हुई थी तब एज बेबी सोनिया, तब वो काम करती थी। फिर बड़ी होके एज एन अडल्ट तो नहीं बोलेंगे, वो 15 साल की थी एक्चुअली जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म की थी एज अ ग्रोन अप, विच वॉज रिक्शा वाला इन 1973 विच फ्लॉप्ड। लेकिन उसी साल she became immensely popular with this super duper hit film जिसमें उनका सिर्फ एक गाना था। actually पूरा रोल उनका था लेकिन फिल्म की लेंथ इतनी बढ़ गई थी कि उनका रोल कट करना पड़ा, बस ये गाना रखा गया। लेकर हम दीवाना दिल यादों की बारात फिल्म से, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना। मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं सेल्यूलर से बोल रहा हूँ। सर हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊँ। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
3: अच्छा,
4: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
3: पास है क्या ये सर्विस?
4: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर। जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा, सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
3: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस का?
4: सर आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
3: और ठीक है,
4: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
3: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
4: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया। अब आपके बॉस ये सुनेंगे, सुनिए।
3: ये क्या है भैया?
4: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
3: तो भी मशीन चला रहे आती भी है।
4: सर मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देखे देखिए।
3: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
4: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
3: मजाक कर रहा है तू मेरे से?
4: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, आई एम सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर। हेलो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गाली नहीं सुन सकता सर, मैं इतनी।
5: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गाली मत दीजिए यार।
4: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया है डब होके।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
8: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
10: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu, only on

आपको पता है नीतू सिंह की मम्मा खुद एक्ट्रेस बनना चाहती थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनका नाम था राजी सिंह और नीतू सिंह के करियर को वही कंट्रोल करती थी, उनके कॉस्ट्यूम्स मेकअप का ध्यान रखती थी। इनफैक्ट नीतू सिंह की एक दो फिल्मों में उन्होंने ऐसे छोटा मोटा रोल भी किया है, लेकिन एक मेजर रोल जो उन्होंने नीतू सिंह की लाइफ में निभाया वो था उनकी लव स्टोरी के अगेंस्ट विलन का। जी तो अमर अकबर एंथनी में जैसे तैयब अली होते हैं जो अकबर और सलमा का रिलेशनशिप अप्रूव नहीं करते हैं, रियल लाइफ में ये राजी सिंह जी थी नीतू सिंह की मामा जो ऋषि कपूर और नीतू सिंह का रिलेशनशिप अप्रूव नहीं कर रही थी, बिकॉज उनको ऐसे लगता था कि कपूर फैमिली के मैन काफी रूमर्स में स्कैंडल्स में फंसते रहते हैं और वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी के करियर में इस तरह का कोई लफड़ा हो। इनफैक्ट जब नीतू सिंह ऋषि कपूर के साथ डेट पर जाती थी तो साथ में उनकी एक कजिन भी जाती थी चेक रखने के लिए, पर धीरे धीरे धीरे फिर वो मान गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
4: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
3: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
4: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन

मुलाकात 1974 की फिल्म जहरीला इंसान के सेट्स पर हुई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तब मात्र 15-16 साल की थी नीतू सिंह और ऋषि कपूर इनको बहुत बुली किया करते थे। ये बहुत इरिटेट और अनॉय हो जाती थी उनसे। फिर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई। दोस्ती मतलब ऐसी कि अपनी रूठी हुई गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए ऋषि कपूर नीतू सिंह से मदद लेते थे। कभी गर्लफ्रेंड को टेलीग्राम भेज, कभी उसके घर पे फोन लगाओ, उसकी मम्मी ने फोन उठाया तो गर्लफ्रेंड को बुलवाओ, इस तरह के काम। लेकिन ये दोस्ती प्यार में कब बदली, कौन सी फिल्म की शूटिंग करते हुए, करते हैं बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है।
4: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना है तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता है तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना है तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाता रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं आप, यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
3: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑल
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: 89.6, 89.6, it's hot। पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषि कपूर और नीतू सिंह की पहली मुलाकात तो 1973-74 में हुई थी जहरीला इंसान फिल्म के सेट्स पर, लेकिन उनका प्यार हुआ था कभी कभी फिल्म के सेट पर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई उससे पहले दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, एक्चुअली दोस्त से पहले भी इनका बैंटर चलता था। ऋषि कपूर काफी बुली किया करते थे नीतू सिंह को, और दोस्त ऐसे बने कि ऋषि कपूर की जो तब गर्लफ्रेंड थी उनसे उनका ब्रेकअप हो गया था, तो उनको मनाने के लिए वो नीतू सिंह की हेल्प लेते थे। वेल, वो गर्लफ्रेंड तो नहीं मानी, लेकिन ऋषि कपूर साहब को नीतू सिंह के लिए उनकी फीलिंग्स का रियलाइजेशन हो गया। उस टाइम ये दोनों इतनी फिल्में साथ में कर रहे थे कि एक दूसरे के ऐसे यूज्ड टू होने लग गए थे। नीतू सिंह जी को भी थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा था, तो कभी कभी फिल्म की शूटिंग के दौरान ये प्यार की आग दोनों तरफ बराबर टाइप की लगी हुई थी, लेकिन कोई कन्फेशन नहीं हुआ था। फिर कभी कभी फिल्म के बाद जब ऋषि कपूर साहब एक और फिल्म की शूटिंग यूरोप में कर रहे थे, तो वो नीतू सिंह को बहुत मिस करने लग गए। तब उन्होंने उनको एक टेलीग्राम भेजा कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तुम्हारे बिना मुझे अकेला लग रहा है। एंड दैट वाज सॉर्ट ऑफ लव कन्फेशन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

अगर आप सारा जमाना हसीनों का दीवाना यस याराना फिल्म का जो गाना है इसका आप वीडियो देखें तो देखेंगे कि आधे गाने में नीतू सिंह अमिताभ बच्चन के साथ हैं, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द सॉन्ग में वो गायब हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और इसकी बड़ी ना क्यूट सी वजह है। तो इस गाने की जब शूटिंग हो रही थी 1979 में, तब ऋषि कपूर नीतू सिंह की नई नई सगाई हुई थी और सीन कुछ ऐसा हो रहा था, कोलकाता में ये शूटिंग हो रही थी और फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो ऋषि कपूर नीतू सिंह की बात ही नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से इस गाने की शूटिंग के टाइम पे शी ब्रोक डाउन एंड रोने लग गई। तब अमिताभ बच्चन साहब ने इनसे पूछा कि क्या हो गया, उन्होंने बताया कि ये हो गया, याद आ रही है, बात नहीं हो पा रही है। तो अमिताभ बच्चन साहब ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से उनकी मुंबई वापसी की टिकट वगैरह करवाई और इसीलिए वो आधा गाना नीतू सिंह के बगैर ही शूट हुआ। चलिए इस फिल्म का एक और ब्यूटीफुल गाना सुन लेते हैं, जिसमें सारे गाने में नीतू सिंह जी दिखाई देती हैं अमिताभ बच्चन के साथ। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
3: हाँ जी बोलिए।
4: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
3: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ। तो हिडन चार्जेस?
5: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
3: कौन बोल रही है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
3: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
6: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
3: हेलो कौन बोल रहा है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
3: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
5: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
3: हेलो मैडम।
4: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
3: कौन बोल रहा है?
4: रमेश बोल रहा हूँ सर।
3: अभी कोई और बोल रही थी।
4: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
3: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
7: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
3: कौन बोल रहा है?
4: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
3: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
8: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
3: कौन बोल रहा है भैया?
4: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
3: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं चाहिए मुझे।
6: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
4: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या
3: कोई बोल रहा है?
4: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल रहा
3: हूँ
4: आपसे, रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा
9: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू।
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: नीतू सिंह को अपने ग्रोइंग अप ईयर्स में पता है किस पे क्रश था? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इन्हें क्रश था शशि कपूर पे। जी, उनको पता थोड़ी ना था कि आगे जाके वो उनके देवर ससुर बनने वाले हैं। और देखो ऐसा है यार, प्यार किसी से भी हो, जो क्रश होता है ना, खास करके ग्रोइंग अप ईयर्स वाला, उसकी अपनी एक अलग जगह होती है, वो जगह कोई ले नहीं सकता है। और बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको अपने क्रश से अटेंशन मिल जाता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता है। नीतू सिंह को तो अपने क्रश के साथ फिल्में करने को मिल गई, उनके साथ रोमांटिक गाने शूट करने को मिल गए। तो सुन लेते हैं दीवार फिल्म का ये गाना, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है?
2: क्या है?
1: कह

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
4: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
3: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
4: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा। खूब मिलेगा,
0: मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स
0: विद चारू ओनली ऑन

आपको पता है नीतू सिंह ऋषि कपूर के साथ अपनी शादी में सबसे ज्यादा इनसिक्योर कब हुई थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो तब हुई थी जब 1985 में डिंपल कपाड़िया की वापसी हुई थी ऋषि कपूर के साथ सागर फिल्म में, बिकॉज बॉबी के टाइम पे इन दोनों के अफेयर के रूमर्स थे और उस वजह से नीतू सिंह काफी घबराई हुई थी। वैसे नीतू सिंह जी ने बहुत सारे इंटरव्यूज में ऋषि कपूर जी की शादी के बाहर जो इन्वॉल्वमेंट्स थे उनके बारे में बात की है और ये भी कहा है कि वो कभी इतनी इनसिक्योर नहीं होती थी, बिकॉज शी वाज श्योर कि वो लौट के उनके पास ही आएंगे। लेकिन ये डिंपल कपाड़िया वाले टाइम पे, सागर के टाइम पे, शी वाज वेरी स्कैर्ड। और जबकि यहाँ सच ये था कि इस टाइम पे ऋषि कपूर एंड डिंपल कपाड़िया वर जस्ट गुड फ्रेंड्स। वेल, ये बात और इसके अलावा और भी बहुत ही तड़कती भड़कती ढंटड़न टाइप की बातें ऋषि कपूर जी ने इस बुक में रिवील की हैं या कन्फेस की हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: हमें देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो चलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हट जाए।
1: हो जाए।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
2: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
1: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
3: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
1: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
4: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
5: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.
6: Mirchi Stories.
7: Stories. Bas 24 hours will
8: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
9: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
10: मिर्ची, इट्स हॉट।
11: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन?
12: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
11: मेरे घर के पास बहुत कबूतर है, परेशानी होती है यार, क्या करूं?
12: तुम्हें जब पता है कि इतने सारे कबूतर हैं, तो घोंसले के बाजू में घर मत बना, समझा?
13: रख, रख,
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

नीतू सिंह जी के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना इंटरनेट पे, वो ज्यादातर उनकी कपूर फैमिली से जुड़ी हुई है। यू नो, कपूर खानदान की बहू, ऋषि कपूर की वाइफ, रणबीर कपूर की मम्मा, आलिया भट्ट की मदर इन लॉ। लेकिन उनके बारे में शी एज अ पर्सनालिटी बहुत कम इंटरव्यूज या कम इन्फॉर्मेशन है, जिसकी मेन वजह ये है कि जब भी अपने करियर की पीक पर थी 1970s, नीतू सिंह वॉज एवरीवेयर, पता नहीं कितनी सारी फिल्में। एंड ये सब छोड़ छाड़ के 1980 में इन्होंने ऋषि कपूर से शादी कर ली। वैसे तो ऋषि कपूर साहब ने अपनी बुक खुल्लम खुल्ला में ये रिवील किया है कि उन्होंने कभी इनको फोर्स नहीं किया अपना करियर छोड़ने के लिए, लेकिन साथ में ये भी कन्फेस किया है कि इन्होंने कभी इनको ज्यादा इनकरेज भी नहीं किया वापस फिल्मों में काम करने के लिए, क्योंकि तब वो एक बहुत बड़े मेल शोविनिस्ट थे और बाद में सुधर गए थे। ये सब उन्होंने ही लिखा अपने बारे में, मैं नहीं बोल रही। और बाद में कई ओकेजन्स पे ऋषि कपूर ने नीतू सिंह को इस बात के लिए शुक्रिया भी कहा। एक्चुअली नीतू सिंह जी ने कहीं एक इंटरव्यू में शायद ये कहा भी था कि क्योंकि वो बचपन से काम कर रही थी, उन्होंने अपनी लाइफ जी ही नहीं थी और इसीलिए ऐसा डिसीजन उन्होंने लिया था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू, आपके साथ आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: धमाल 4 में धमाल मचाने आ रहा है कहर।

इस गाने को आवाज दी है गुरु रंधावा ने। म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय गुरु रंधावा, गिल मचरई एंड रॉनी अजनाली। धमाल फोर से सुनते रहिए कहर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी।

पल पल में शामिल है। वो कौन है जो मेरी मंजिल है? वो कौन है जिसे मैं सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ?

मैंने ये न जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है, वो जो भी है।